इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: श्रोताओं, कबीर साहब सीधे हमारे मन की चालाकी को पकड़ते हुए कहते हैं, मन जाने सब बात, हमारा यह जो मन है यह कोई सीधा साधा नहीं है, यह सब कुछ बहुत अच्छी तरह जाने यानी जानता है। इसे पता है कि झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, किसी का दिल दुखाना या लालच में पड़ना गलत है। जानत ही अवगुण करें, पर कमाल की बात देखिए, यह सब कुछ जानता ही यानी जानते हुए भी जानबूझकर वही अवगुण यानी अवगुण और गलतियां बार बार दोहराता है, तो ऐसे इंसान का क्या हष्ट होगा। अगली पंक्ति में कबीर एक सीधा और तीखा सवाल पूछते हैं, काहे की कुशलात, जो इंसान सब कुछ जानते हुए भी गलत रास्ते पर जा रहा है उसकी कुशलात यानी उसका कल्याण या भलाई कैसे संभव है। कर दीपक कुएं पड़े, उसकी हालत तो ठीक वैसी ही है जैसे मनुष्य अपने कर यानी हाथ में जलता हुआ दीपक यानी उजाला लेकर भी सीधे जाकर कुएं यानी कुएं में कूद पड़े। हाथ में रोशनी होने के बाद भी अगर कोई कुएं में गिर रहा है तो दोष अंधेरे का नहीं बल्कि उसकी अपनी मूर्छा का है। यह दोहा विवेक और पाप के दार्शनिक विज्ञान को प्रकट करता है। भारतीय दर्शन में माना गया है कि केवल शाब्दिक ज्ञान होना ही असली ज्ञान नहीं है। जब तक हमारा ज्ञान हमारे आचरण में नहीं उतरता तब तक वह व्यर्थ है। कर दीपक हमारे उसी बौद्धिक ज्ञान का प्रतीक है जो हमारे पास किताबों, सत्संगों और विचारों के रूप में मौजूद तो हैं, लेकिन हमारा मन वासनाओं के वश में होकर उस ज्ञान के प्रकाश को अनदेखा कर देता है। कबीर समझा रहे हैं कि अज्ञानवश की गई गलती उतनी आत्मघाती नहीं होती जितनी ज्ञान के अहंकार में रहकर जानबूझकर किया गया आत्मछल होता है। ऐसी चालाकी जीव को और गहरे बंधनों में धकेल देती है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से एक बहुत ही ईमानदार सवाल कीजिए। जब हम किसी के प्रति मन में कड़वाहट लाते हैं, जब हम पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं या जब हम कोई चालाकी करते हैं, तो क्या हमारा अंदर का विवेक हमें टोकता नहीं है? हमारा मन सब जानता है पर फिर भी हम खुद को सही साबित करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। आज कोशिश कीजिए इस आत्मछल को रोकने की, अपने हाथ के इस दीपक यानी अपने विवेक के प्रकाश को केवल दूसरों को दिखाने के लिए मत रखिए बल्कि इसके उजाले में अपने कदमों को देखिए। जब आपका मन जानते हुए भी किसी अवगुण की तरफ बढ़ने लगे तो वही ठहर जाइए और उस राम नाम की चेतना को जगाइए जो आपको कुएं में गिरने से बचा लेती है। जब ज्ञान आचरण बन जाता है तभी जीवन में सच्ची कुशलता आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
2: प्रॉम्प्टर ऑफ फॅटलिझम, हिज फिलॉसॉफी मीन्स बिलीफ इन डिव्हिनिटी। ही सेज, मेक अँड ब्रेक इज इन नो वन्स हँड्स, ऑक्युरन्सेस शेप देमसेल्व्स, नो वन कॅन डिस्ट्रॉय मिझरीज ऑन इन्क्रीज देम। अजित केशकंबाल वॉज the abolitionist, scientism was his philosophy. He said, yajna, rituals, soul are vain. no paradise, no hell, no escape from the soul, from the worldly miseries. There are no cycles of birth and death. Of 84 lakh cycles of yonis, says he, Pakhuddha Kanchiyan, the promoter of reciprocity, life is made up of earth, fire, air, space, pains and pleasures, and the soul are the seven great elements. They are self-made and eternal. Nothing can destroy them. Sanjay Belaput was the prompter of distractionism. Skepticism is also its name. Man has not to experience the fruits of virtues or vices after the death, or soul is non-existence, says Belaput. Diganthanath Put, the promoter of Chaturya Samarthavad, ingenuity. Soul has rebirth due to committed vices. In order to avoid vices, avoid violence, avoid theft, avoid lies, observe celibacy, avoid accumulation, were his lessons. Philosophy of contemporaries. Bhatatagata, you felt inadequate to some extent and of ignorance in some other ways. Purna Kashyap, Pakhuddha Kanchiyan, aloof from social responsibility, their philosophies can go to the extremity of killing impurity. Man may be the slave of the fate. If Makkali Gosal is to be accepted, consumption and merrymaking abundant because of Ajit Keshkambal and Sanjay Belput will cause life free wandering. A man's life will only aestheticism and penance. Because of Niganthanath Put, philosophy before the welfare of man, his upliftment and liberty of his thoughts. Man can be rational. He would be virtuous without rituals. Intellect be in his possession. His life be based on ethics, science and concise in his vision. Bhatatagata, you checked spirituality, science, and for cultural development through concise. You prepared a strong pool of rites with the help of your five percepts, Panchashil, imparted lessons of morality, and with the help of your eight percepts, Ashtashil, made moral invention more minute. You were not extreme abolitionist or ritualist. Your way is a middle way, ritualist. Rituals in spirituality you swept away and accepted stern logic in science. Therefore, you aren't an abolitionist, or you aren't blind believer, blind worshipper of religion. Your path of progress, of humanity, of human welfare, midway Arya Eightfold Path, path for human right, humanitarian. Bhatatagata, your Dhamma teaches morality to man and yields the crop of wisdom, modesty, compassion.
3: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आपले खानदेश, आपली मानसर.

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुशी का जो इंडेक्स है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हर रोज हम कितना खुश रह पाते हैं, क्या हर पल खुश रह पाना संभव है। ऐसे बहुत से सवाल होंगे, बहुत से बिलीफ सिस्टम हमारे होंगे कि नहीं, हर पल की खुशी तो नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में खुशी है तो कभी गम भी होगा। और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमें गम का पता ही नहीं चला तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलती जाती हैं, लेकिन अगर इस श्रृंखला को देखते हैं तो एक बात सामने आ रही है, खुशी मेरी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, मैं खुद क्रिएट करता हूँ। अगर मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ तो वो क्रिएट कैसे करूँगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। एक पूरी साइकिल को हमने देखा है कि किस तरह से मेरा अपना भाग्य जो मुझे अभी तक मैं कहते मिल रहा था वो मैंने ही दिया था और तब मुझे मिला। तो ये एक बहुत अच्छा, एक पावरफुल थॉट क्रिएट हुआ, खुशी का लेवल बड़ा खुशी का इंडेक्स अच्छा पहुंचा। अब एक बात और आ जाती है, डिपेंडेंसी मेरे अपने थॉट पर आई। अभी तक हम देख रहे थे कि खुशी जो है वो कहाँ कहाँ डिपेंड कर रही थी, तो खुशी मेरे डिपेंड कर रही है मेरे थॉट पर। इट मीन्स माय थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
0: तो अब इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को मैं किस तरह से देखूं?
1: एक बार जब हमें समझ में आ गया कि जो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं सारा दिन वो हमारी इस पूरी पर्सनालिटी को बनाता है एंड वो ही फिर हमारे भाग्य का भी निर्माण करता है, तो सारा फोकस अब शिफ्ट होकर मेरे ऊपर आ जाता है कि चाहे बाहर सिनारियो कुछ भी हो, फिर उस सिनारियो में भी अगर आई कैन क्रिएट पावरफुल थॉट्स, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिनारियो। घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, रिश्तों में कुछ संस्कार स्वभाव का टकराव है, ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो भी मेरे पास चॉइस है कि अगर आई एम एबल टू क्रिएट द राइट थॉट्स एट दैट टाइम, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिचुएशन एंड नॉट ओनली क्रॉस द सिचुएशन, आई कैन चेंज द सिचुएशन। है ना, परिस्थिति मेरे संकल्पों से बदलती
0: थी। अल्टीमेटली मेरा मोटिव जो था वो सिचुएशन बदलने का था।
1: या सिचुएशन को तो चेंज करना ही है ना। अगर मेरा रिश्तों के साथ, सपोज किसी के साथ कुछ टकराव चल रहा है, अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आई वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन ताकि वो जो रिश्ता है हमारा इट बिकम्स अगेन स्मूथ, अगेन फ्लोइंग। लेकिन हम सोच रहे थे वो ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि पावर मेरे हाथ में है कि मैं ठीक करूंगी तो मेरे लिए तो एटलीस्ट पहले ठीक हो जाएगा, एंड फिर मेरे लिए ठीक हो जाएगा तो वो आगे भी ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेट करेंगे कि वो ठीक करेंगे तो ठीक होगा, तो इट इज जस्ट नॉट हेडिंग एनीवेयर। तो एक चीज जो हम अवेयरनेस के साथ अब जीवन को जीना शुरू करें कि ब्लेम करना बंद कर दें कि इनकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, मेरे पास पावर है। तुरंत अपने आप को रुक कर एक मिनट देखे, व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग, अभी अभी कुछ हो रहा है, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड एंड वन मिनट जस्ट चेक व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग। जैसे आपने उस दिन भी कहा, बहुत मुश्किल है थॉट्स को देखना, हम नहीं देख पाते। मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमने देखा नहीं,
0: आदत नहीं है,
1: हमने देखा नहीं है। थॉट्स है क्या? थॉट्स है एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो यहाँ चल रही है। अब हम देखते नहीं तो वो बैकग्राउंड में चलती ही जाती। अब जैसे ही हम उसको देखना शुरू करते वो फोरग्राउंड में आ जाती है। आई विल बिकम अवेयर, फर्स्ट स्टेप है अवेयर होना के व्हाट आर द थॉट्स आई एम क्रिएटिंग। जब तक मैं अवेयर नहीं होंगी तो चेंज करना
0: पॉसिबल
1: इम्पॉसिबल है। अब थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वी वॉन्ट टू चेंज द क्वालिटी। दुनिया में भी आज पॉजिटिव थिंकिंग, दिस हैज बिकम द थिंग, लाइक उसमें बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है, हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि थॉट्स का सोर्स क्या है, व्हाट इज क्रिएटिंग द थॉट। थॉट तो एक एनर्जी है जो अंदर क्रिएट हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई रॉ मटेरियल तो अंदर जाएगा ना, जिसके बेसिस पर ये थॉट क्रिएट होता। तो थॉट्स के जो बेसिस है, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन। हम क्या इंफॉर्मेशन सारा दिन अंदर लेते हैं, वो दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू ऑल आर सेंस ऑर्गन्स। हम सारा दिन क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या भोजन खाते हैं, क्या अरोमा हम लेते हैं, क्या हम टच करते हैं। अब जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट इनटू द हैबिट कि सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ लिया एंड हमें लगता है ओ दिस इज अगेन नेचुरल में आ जाता है कि बेड से उठे नहीं कि उठते भी नहीं है, कई बार बेड में ही न्यूज़पेपर आ जाता है. तो फर्स्ट पेज पढ़ा, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ किसी पिता ने अपने बच्चों
0: के साथ. सुबह जो पढ़ा है वो सारा दिन रहता भी है, सारा दिन आपके साथ वो न्यूज कंटिन्यूस रहती है आपके साथ.
1: सिर्फ न्यूज तो रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जब आप सोकर उठे तो आपके माइंड को कितना रेस्ट मिला है. यू नो, आपका माइंड एकदम साइलेंट हो गया है. जब ये साइलेंट हो जाता तब इसकी अब्सॉर्प्शन पावर बहुत हाई है. अब इसमें आप जो भी डालेंगे वो बहुत इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा. तो द माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, यू नो, ब्लॉटिंग पेपर ऐसे चूस लेता है. तो साइकोलॉजिस्ट बताते कि सुबह के 2 घंटे करीब हमारी अब्सॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है. उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट होने लगता, तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा. साइलेंट माइंड, तो साइलेंट माइंड होते ही क्या हुआ, जो कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड है वो साइलेंट हो गया. आप सब कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड पर आ गए. अब जो भी आप अंदर डालेंगे वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाएगा. और सबकॉन्शियस माइंड पर ही हमें वो डालना होता है जो हमें क्रिएट करना है सारा दिन के लिए. अब साइलेंट माइंड है, कॉन्शियस लेयर साइलेंट है, सबकॉन्शियस लेयर एक्टिवेटेड है, और उसमें आपने डाल दिया कि यहाँ अर्थक्वेक हुआ, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ मेट्रो का वो कुछ एक्सीडेंट हो गया. क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम सबकॉन्शियस के अंदर सुबह सुबह डाल रहे हैं. दे आर वर्ड्स ऑफ वायलेंस, फियर, हेट्रेड, इनसिक्योरिटी, ये डाल दिया. तो सुबह सुबह बीज कौन सा बोया? फिर हम कहते हैं सारा दिन क्यों फियर है, क्यों इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे हल चलाकर मिट्टी को एकदम वो करके बीज कौन सा डाला था सुबह सुबह, फियर, वायलेंस, इनसिक्योरिटी. फिर सारा दिन आप चलो बाहर, आपकी लेयर फाउंडेशन कौन सी है, वही है. तो वो जो फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह भरी, उसी क्वालिटी की थॉट सारा दिन आप क्रिएट करेंगे. भले उस देश से आपका कोई लेना देना नहीं जिसके बारे में आपने सुबह पढ़ा, उन लोगों से नहीं है, लेकिन वर्ड्स कौन से डाले थे सुबह सुबह, इट इज़ नॉट इस देश में ऐसा हुआ, इट इज़ क्या हुआ, वो वर्ड आपकी सबकॉन्शियस लेयर में फिट हो गया. अब वही वर्ड्स आपके थॉट्स को क्रिएट करते हैं, बिकॉज दैट्स द एनर्जी दैट आई गेट ड्यूरिंग द डे. अब आप कितना भी ट्राई करो पॉजिटिव सोचना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप शाम को घर पहुँचते हैं, कोई घर पर नहीं पहुँचा टाइम पर, आप फ़ोन भी ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं फोन, नॉर्मल थॉट्स कौन से आने लगते हैं लोगों के अंदर,
0: एक्सीडेंट.
1: सी, आपने इतना इजीली बोल दिया, एक्सीडेंट हो गया. क्यों एक्सीडेंट हो गया? व्हाई डज दिस थॉट कम टू मी, अपने ही परिवार के सदस्य के लिए कि एक्सीडेंट हो गया होगा? क्योंकि सुबह सुबह मैंने क्या भरा था अपने अंदर. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. सिंपल प्रोसेस क्या करना है, मॉर्निंग उठते ही सबकॉन्शियस लेयर जब एक्टिवेटेड है, इसमें बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो भर दिया जाता है अंदर. तो जैसे वो पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स अंदर भरे जाएंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होगी, वो उसी क्वालिटी की क्रिएट होगी. तो एक है सुबह में कौन से इन्फॉर्मेशन भरते, और एक है रात को सोने से पहले. ये 2 टाइम बहुत क्रिटिकल है. अब मोस्टली आजकल हम रात को सोने से पहले क्या भरते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ अगेन मीडिया, एंड वो सुबह है न्यूज़, शाम को है एंटरटेनमेंट. तो एंटरटेनमेंट के नाम पे भी इट इज़ ईदर फियर और पैनिक, या यू नो, संबंधों में मिसट्रस्ट, रोना धोना सीरियल के अंदर. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, सो गए, रात को कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी. फिर जो रात को क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, सुबह उठेंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स
0: के साथ उठेंगे.
1: सो बेसिकली स्लोली इट बिकम्स अ विशियस साइकिल. तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर हम ये ध्यान रखें कि सुबह सुबह उठते ही पहली चीज हम क्या अंदर डालते हैं, इट्स लाइक ब्रेकफास्ट, कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होना चाहिए, आपका ब्लॉटिंग पेपर बहुत पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से भरा होना चाहिए. एनीवन कैन ट्राई दिस, सिर्फ 1 महीने के लिए आप सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर मत देखो, टेलीविजन नहीं देखो, आप पढ़ो न्यूज़पेपर but slightly later on. You don't have to do it wo subah ka, you know, 6 se 8 ya 6 se 9 baje ke beech. Aur uski jagah aap kuch aur padho. Kai log kehte theek hai hum paper nahi padhenge, lekin uski jagah kuch aur to aap padhenge jisse wo positive information aapke andar bharta. Itna sa karne se you will see ki aapko mehnat kam karni padti hai. Bhojan hi andar agar negative dalenge to positive thoughts kahan se create hoga? It's very very important. Agar humne subah subah ye dala apne andar ki jo hoga acha hoga, mere sath sab kuch acha hi ho raha hai, parmatma parmatma ki shakti mere sath hai, ab raat ko mere ghar koi late hai, koi nahi pahunch raha, I wouldn't think of accident because I haven't fitted that information in the morning. I will say एक्सीडेंट ना हो गया, उनको पता नहीं क्या हो गया, अगर उनको खो गया तो हमारा घर कैसा चलेगा, मेरा जीवन कैसे होगा, बच्चों को मैं कैसे, इतनी सारी थॉट्स क्रिएट कर दी, आधा घंटा एक घंटा इस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. अब वो फाइनली तो पहुंच गए घर पे, हम कैसे ग्रीट करेंगे उनको, सारी वो जो फ्रस्ट्रेशन हमने बिल्ड कर दी अंदर वो सारी बाहर निकल आएगी. सामने वाला व्यक्ति भी कुछ किसी सीन से गुजरा है तब वो लेट है, तो तुरंत उस टाइम हम दोनों के बीच क्या होगा, एक झगड़ा होगा. दिस इज माई डेस्टिनी फॉर द इवनिंग. ये डेस्टिनी किसने क्रिएट की? हम कहते उन्होंने की क्योंकि वो लेट थे, लेकिन नहीं, मैंने किस तरह की थॉट्स क्रिएट की जब मैं उनके लिए वेट कर रही थी. इफ आई वुड हैव रिमेन्ड स्टेबल एंड सेड आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में फोन तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा, फोन नहीं कैच कर रहा होगा, तो जब सामने वो व्यक्ति पहुंचेगा, हाउ विल आई मीट द पर्सन, मेबी एब्सोल्युटली ओके, सो देयर विल बी नो फाइट, टू डिफरेंट डेस्टिनीज. तो वी आर क्रिएटिंग इट एट एवरी स्टेप. सो वन सोर्स इज इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले. तो इसके लिए अगर हम सब अपने पास कोई ऐसा लिटरेचर रखे, जैसे एट द ब्रह्मा कुमारीज हम परमात्मा के महावाक्य सुनते, एवरीवन कैन चूज कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सुबह 15 मिनट और रात को जस्ट सोते समय, आज रात को सोते समय या तो हम टीवी देखते, और अगर पढ़ते हैं तो वी आर रीडिंग अगेन फिक्शन या समथिंग वेरी वेरी स्टिम्युलेटिंग, तो माइंड को उतना स्टिम्युलेट करके फिर हम सो जाते हैं. तो शरीर तो सो गया लेकिन मन अभी भी बहुत एक्टिव चलता. फिर जब सुबह उठते तो स्थिति कैसी होती है? इट जस्ट डजंट फील के योर एनर्जी.
0: रात को जब सो रहे होते हैं, जब सोते हैं तो लाइक काफी साइंटिस्ट से भी बात की, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है.
1: हाँ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड स्लीप कर जाता. अभी यही, अगर आप किसी बात से परेशान हो, आपके कॉन्शियस माइंड में कोई थॉट्स चल रही है, तो आपको नींद नहीं आती ना. आप कहेंगे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं सो पा रहा. सो कौन नहीं पाता जिसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट ही नहीं होता. वो दिन की चीजों को, सारा दिन जो, या उसकी कोई परेशानी है वो उसके ऊपर होवर कर रहा, तो वो स्पीड ऑफ थॉट बहुत फास्ट है, तो वो कॉन्शियस माइंड को साइलेंट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर उनको नींद नहीं आती. तब वो कोई ऐसा मेजर लेंगे, चाहे कि वो स्लीपिंग पिल है या कोई भी और तरीका, जिससे वो कॉन्शियस माइंड को दबा दे और उनको नींद आ जाए. तो अगर हम वो सब करने की बजाय सिर्फ कुछ अच्छा पढ़ें बैठकर, हमारी थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाए. यू नो, कोई बात मुझे परेशान कर रही है तो वो नेगेटिव बहुत सारी हैं. आई कांट स्लीप, डू नथिंग, जस्ट पिक अप समथिंग वेरी वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव एंड उसको पढ़ना शुरू करें. आपके थॉट्स धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी, आपका माइंड स्लो डाउन होता जाएगा. और यही आप सारा दिन भी कर सकते हैं. जैसे कई बार हम कहते हैं कि सारा दिन में चलते चलते क्यों ऐसी, यू नो, ऐसी वाली थॉट्स आ रही है, नेगेटिव आ रही है. अगर आपके पास उस समय ऐसा कोई लिटरेचर है, जस्ट ओपन इट. क्योंकि कई बार हम खुद पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाते. यू नो, कोई बात एकदम मेरे चलती जा रही है, आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ इट. जस्ट ओपन एंड स्टार्ट रीडिंग.
0: कई बार क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो सारा, क्योंकि वो थॉट इतना पावरफुल होता है कि वो पूरा का पूरा पेज पढ़ जाएंगे और हमें कुछ याद
1: नहीं. रीड इट लाउडली.
0: हाँ,
1: रीड इट लाउडली, इट वर्क्स. सी, हमें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए. हम सोचते हैं नेगेटिव चल रहा है, चलने दो, पढ़ा मैंने नहीं समझ. रीड इट लाउडली, जैसे किसी और को पढ़ के सुना रहे हैं. क्योंकि जब आप जोर से पढ़ के सुनाते हैं आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन उसमें चली जाती है. कभी कभी जब हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं तो माइंड फिर भी कुछ और सोच. रीड इट लाउडली, इट हैज टू चेंज. होगा ही, नहीं चले उसी तरह दर्द के अंदर, जब धीरे धीरे इस तरह से अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब थॉट्स क्यों नहीं चेंज होंगे. इट हैज टू चेंज. एंड द अदर थिंग व्हिच हैज अ डीप इम्पैक्ट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस. कि पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी
0: तो मेरे को कैसा अनुभव हुआ था,
1: तो वो मेरे जैसे ही मैं आपको इस बार मिलती हूँ फिर से, वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे ऊपर फिर से वो सारा कैसेट जैसे रिवाइंड हो जाता है और उसी क्वालिटी की थॉट्स फिर से चलनी शुरू हो जाती है. तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, लेट मी सिट एट द एंड ऑफ द डे एंड क्लीन इट आउट. क्लीन इट आउट, उस सिचुएशन को समझूं, मैं अपने आप को समझाऊं, ताकि मैं यहाँ से वो जो फाइल बिल्ड होती जा रही है वो एक्सपीरियंस की, वो नेक्स्ट सिनारियो में मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. क्योंकि बहुत बार हम पास्ट एक्सपीरियंस पे ब्लेम डाल देते हैं, क्या करूँ मेरे साथ पहले इतनी बार ऐसा ही हुआ था तो मुझे डर तो लगेगा ही ना, पिछली बार भी ऐसा ही इन्होंने किया था तो मुझे इस बार डर तो लगेगा. तो इफ आई कीप सेइंग दैट, तो हर बार जब मेरे पास वो सीन आएगा तो मैं अपने आप को क्या करूंगी, एक विक्टिम जैसी फील करूंगी.
0: और फिर मैं और फिर वो होने भी लग जाएगा.
1: बिकॉज़ आई क्रिएट दैट थॉट अगेन.
0: नहीं, एक और बात है कि सपोज आपने नहीं किया हो लेकिन वो सिचुएशन जब आई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था. तो वो सिचुएशन आपके सामने, कोई भी वो सिचुएशन फिर से आती है तो अच्छा मुझे ये फियर रहता है कि वो फिर वैसा ही होगा.
1: सो आई बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम मिली, आपने मेरे से ठीक से नहीं बात की. अब ये बात मैंने पकड़ ली अपने अंदर और मैं सोच रही हूँ इन्होंने नहीं बात की, नहीं बात की. अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं कल आपसे मिलने वाली हूँ फिर से, आई नीड टू पहले बैठ कर वो पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन को मैं अपने साथ बात करके, डिस्कस करके अपने साथ वो क्लीन आउट करूँ कि हाँ भले नहीं बात की बट इसको मैं अपनी सोच पर हावी दे होने वाली नहीं हूँ.
0: तो फिर मैं क्या करूँ, मैं उनको मतलब एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूँ?
1: वन इज गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, सेकेंड इज येस द अदर पर्सन कैन बी अपसेट, थर्ड इज इररिस्पेक्टिव मैं फिर भी ठीक से बात कर सकती हूँ. क्योंकि अदरवाइज मेरा रिश्ता आपसे बिगड़ता ही जाएगा, बिगड़ता ही जाएगा, बिगड़ता ही जाएगा, क्योंकि वो मैं पास्ट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट सीन पर हावी होने दूंगी. अब क्या होगा, कल शायद आपका मूड ठीक नहीं था लेकिन हो सकता है आज आप ठीक हो बिल्कुल, लेकिन आज मैंने वो पास्ट एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड किया. तो वो मैं पास्ट एक्सपीरियंस लेकर जब आपके सामने आती हूँ तो मैं आपको उसी के थ्रू देखती हूँ. एंड फिर आप ठीक भी हैं तो मुझे ठीक नहीं लगते क्योंकि मैंने आपके बारे में क्या बना लिया कि नहीं ये तो ऐसे ही हैं. तो इसलिए हम एक बहुत सुंदर चीज जो यहाँ पर करते, एंड दैट इज हर रोज रात को थोड़ी देर बैठे अपने साथ, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, कि हर रोज रात को 5 मिनट्स 10 मिनट्स बैठ कर अपने दिन का चार्ट, जैसे लोग लेटर नहीं लिखते, अपनी डायरी नहीं लिखते, तो डायरी में क्या करते, सिचुएशंस को सिर्फ लिख देते हैं, आज ऐसा हुआ, आज मेरे, देयर इज नो लर्निंग इन दैट, वो तो सिर्फ आपने एक रिकॉर्ड अपना बना दिया. लेकिन अगर आप अपने दिन को रिवाइंड करके उसमें जो आपने हर्ट क्रिएट किया किसी के प्रति, हेट्रेड क्रिएट किया किसी, वो जो आपने यहाँ अक्यूमुलेट कर लिया, अगर आप उसको लेट गो कर सकते हो, डिलीट
0: कैसे लेट गो कर सकते हैं, उन सिचुएशंस को दोबारा देखो,
1: उन सिचुएशंस को भले देखो बट डोंट गो थ्रू दैट पेन अगेन. उन सिचुएशंस को देखो और फिर अपने आप को देखो कि अगर मैं अपनी थॉट को थोड़ा सा चेंज कर लूँ इस टाइम, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस रिलेशनशिप, आई कैन नॉट गो ऑन लिविंग इन दिस पेन अगेन एंड अगेन. क्योंकि मैं आज अगर नहीं क्लियर करती इस हार्ड डिस्क को तो फिर ये जो सारा अक्यूमुलेट हो गया ये मेरे नेक्स्ट डे पर carry forward होता है. This is what we call cleaning the hard disk every, जो scan disk करते हैं ना, तो हर रोज अपना ये scan करें कि yes उन्होंने जो किया so किया, but am I going to carry forward this hurt? ये तभी हम कर पाएंगे जब हम realize करेंगे कि irrespective दूसरे का व्यवहार कैसा भी है, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिया. और इसको प्रैक्टिस करो. अब यू ब्रिंग अप दैट सीन, हो सकता है आज सुबह मुझे गुस्सा आया था किसी के साथ वर्क करते हुए, मैं रात को उस सीन को लाती हूँ अपने सामने नए से, डिड आई हैव एनी अदर चॉइस, कुड आई हैव हैंडल्ड दैट सीन इन एनी अदर वे, या गुस्सा करना ही ना. अगर मैं नहीं
0: देख, ऑप्शन आ गई कि मैं कर सकती थी तो मैं गिल्ट में चली जाऊँ?
1: नो, गिल्ट में नहीं जाऊंगी. आई विल टेक दैट ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट टाइम. दैट इज वॉट इज द राइट वे ऑफ वर्किंग विद योर सेल्फ. जब हम उस सीन को फिर से देखते हैं कि गुस्से से किया, दूसरा वाला तरीका भी तो था, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रही हूँ. जितना हम अपने साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. अगर हम नहीं देखते हैं तो वो ही पास्ट एक्सपीरियंस, कल इन्होंने तो कल भी काम गलत किया था, इन्होंने तो आज भी गलत किया, मैंने कल भी गुस्सा किया था, मैं आज भी गुस्सा कर रही हूँ,
0: अब तो आज गुस्सा आ रहा तो और जायज हो जाएगा,
1: तो वो फिर एंड देन दैट इज हाउ इट क्रिएट्स माय संस्कार. मेरा बहुत डीप जो हमने कहा, थॉट से फीलिंग से एक्शन फिर हैबिट. हैबिट क्यों बन रही है? क्योंकि कहीं भी रुक कर थॉट को चेंज नहीं किया. तो अगर ये मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम हम अपने साथ स्पेंड करें, पुट इट इन योर डायरी, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, लॉट ऑफ वर्क गेट्स डन, लॉट ऑफ वर्क. अदरवाइज तो आप अपने ऑर्डिनरी तरीके से चलते जा रहे हैं. और उन सीन्स को लेकर अपने रिस्पॉन्सेस को देखना है, सिचुएशन को नहीं देखना है. हम क्या करते हैं, अगर रिवाइंड भी करते हैं आज की दिनचर्या को, तो हम सिचुएशन को देखते और दूसरे लोगों को देखते, वो नहीं है मेरे कंट्रोल में, मुझे सिर्फ ये देखना है मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया. यहाँ पर मैं हर्ट हुई, यहाँ पर मैं गुस्सा कर दिया, या व्हाट एल्स कुड आई हैव डन, दैट इज द प्रोग्रामिंग,
0: ताकि मैं मेरी स्टेबिलिटी रहती.
1: तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सिचुएशन के बारे में नहीं चिंतन करना, औरों ने क्या बोला था या क्या किया था उसके बारे में नहीं चिंतन करना, मैंने क्या रिस्पॉन्स किया था और मैं क्या रिस्पॉन्स कर सकती हूँ आगे. देन आई विल गो टू स्लीप धीरे धीरे क्लीनिंग दैट. अदरवाइज गो टू स्लीप विद द हर्ट, get up next morning with that hurt, and then when you meet that person again, reinforce that hurt. It never just gets cleaned off like that. Then.
0: So wonderful. जो thought create करने के जो process को हमने समझा, तो उसमें तीन चीजें जो हैं आपने कहा, information और मेरा past experience and
1: one more we have to see is
0: belief systems. कि कौन से ऐसे beliefs हैं जो मेरे thoughts को create करते हैं. तो दो को तो हमने खूब अच्छी तरह से समझा है, और आपने जो solutions दिए हैं, see समझ के जब तक कि हम उसे implement नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया, चाहे कितनी भी जैसे आपने कहा किताबें हैं या कुछ भी है, हर कोई बात कर रहा है thought power की. और आपने जो हमें solution दिया है वो ये कि अगर सिचुएशन आती है जो कुछ भी है, हम समय समय पर राइट काइंड ऑफ लिटरेचर को अगर पढ़ें,
1: एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट डेफिनेटली,
0: हाँ उसमें कुछ पढ़ें जरूर, पहली चीज जो हम करें,
1: कुछ पढ़ें, कुछ सुने, मतलब एनीथिंग दैट आई
0: सेंसरी ऑर्गन से, हाँ, जो हम कर सकते,
1: क्योंकि नहीं तो वी आर फ्लडेड विद नेगेटिव,
0: और वो हमें तो मांगना भी नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी मिल रही होती है. ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पे भी मिलते हैं, वो जानकारी वैसे
1: मिलती है. सिंपल एग्जांपल इज दिस टेलीविजन प्रोग्राम. बहुत सारे भाई बहने अपना फीडबैक भेजते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि हर रोज वो रेगुलरली ये प्रोग्राम देख रहे हैं. कुछ नहीं करना ना, बस उतना टाइम अपने लिए टाइम निकाला है, दैट एफर्ट इज बीइंग मेड. तो अपने लिए वो आधा घंटा डेडिकेट किया कि हमें ये प्रोग्राम देखना है. नाउ थॉट, उसी टाइम पर और भी तो प्रोग्राम्स हैं, आपके टेलीविजन पर 100 चैनल्स आ रहे हैं, लेकिन समवन इज चूजिंग टू वॉच दिस प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी और व्हाटएवर. तो वो इस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अंदर ले रहे हैं. मेजॉरिटी लोग जो मिलते हैं, अगर उनसे खुद ही बोलते हैं कि एक चीज जो हुई है ये प्रोग्राम देख के, इमिजिएटली कहते हैं मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है. दे डोंट इवन रियलाइज व्हाट समटाइम Everyone's common thing is mera thought process change ho gaya,
0: sochne ka tarika badla hai, badal
1: gaya. Kisliye? Roz jab suna apne bare mein, wo suna, it has to have an impact, has to. So this is practical proof ki kaise badalti hai
0: information jo hai. To fir is program ke sath to jude rehna hi hai aapko, ki har roz jo aadha ghanta program jo bhi waqt mil raha hai wo zarur dekhna, aur morning mein bhi zarur koshish karein ki kuch padhein, koi aisi jankari jo aisi information jo aapke positive thoughts क्रिएट करने में आपको स्ट्रेंथ देगी, वो बहुत ज़रूरी है. और दूसरा जो कहा कि मेरा बिलीफ, मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, तो दिन भर के पास्ट हर्ट को, सारी नेगेटिविटी को अगर हम डिलीट कर पाएं दिन भर में, आई थिंक समवेयर दैट इज़ गोइंग टू हेल्प. और वो मेरी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको भी काफ़ी बेटर कर देगा. अगर मैं रोती हुई सोऊंगी तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी. तो आपके मन में अगर कोई सवाल उठता है या कोई बात है, जो सजेशन है जो आप इस सीरीज के साथ जुड़ा हुआ बताना चाहेंगे, आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. शिवानी बहन, जिस तरह से रोज इस पूरी श्रृंखला में हमें बातें समझ में आ रही हैं, जरूरी ये भी दिखता जा रहा है कि उस पर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है. थोड़ी देर साइलेंस में बैठ के और अगर वो थॉट क्रिएट करें जो आज हमने समझे हैं, सो विल
1: रिक्वेस्ट आई थिंक हम दो मिनट रिफ्लेक्ट करके लेट गो करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को या उन परिस्थितियों को जो आज दिन तक हम समझते थे कि मेरे ऊपर बहुत सारी हावी हो रही हैं. सो जस्ट टेक एनी वन, बहुत ज़्यादा सबको इकट्ठे नहीं लेते, लेट्स टेक एनी वन एंड लेट्स लेट देम गो फ्रॉम हियर. कंफर्टेबल होकर बैठे, परिस्थितियों से और लोगों से अपने आप को हटाते हुए अपने मन को देखते हैं. क्या सोच सारा दिन मेरी चलती है? एवरी थॉट दैट आई क्रिएट. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये मेरी क्रिएशन है. आज दिन तक जो दर्द, जो धोखा, जो तकलीफ मैंने पकड़ कर रखे थे, वो मैंने पकड़ कर रखे थे. आई चूज टू होल्ड ऑन टू इट. आई चूज टू लिव इन पेन. आज मैं अपने आप को उस दर्द से लिबरेट करती हूँ. By creating the thought, I am a peaceful being. No one else has the power to hurt me. Peace is my nature. Shanti meri shakti hai, ki meri creation hai. Om Shanti.
0: Om Shanti. I'm a peaceful being. In fact, it's amazing, you know, how just one thought and sitting in silence can help you so much. Let go is so simple. Again, ball is in your court. कितने को पकड़ के रखना है और किसको छोड़ देना है, कितना आसान है. एक क्षण में हम छोड़ सकते हैं उस सारे दर्द को. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर आगे भी चलता रहेगा. थैंक यू सो मच.

0: अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है।
1: गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री राम कृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया, मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं, मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं, जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं, ये तो एकदम उन्माद हैं। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत। जो भी हो मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा, परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो। उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया।
2: कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा,
3: देखो देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है?
1: जी हां।
3: वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे ये तो ध्यान से धैर्य, जन्म से ही ध्यान से धैर्य।
0: नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है। वरन उनकी सत्कथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष है। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की।
1: महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु वैसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं।
1: उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं।

0: इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए।
1: इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए।
2: दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी, ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराह नगर से दाशरथी सान्याल सातकड़ी लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंत तो गत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रहे हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी आपने मेरी ये कैसी अवस्था कर डाली, मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा,
3: अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं, समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा।
2: आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए। मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था। सोचने लगा कि ये भी कुछ वैसा ही होगा, किंतु ये सिद्धांत चित्त में ठहर न सका क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं, परंतु मैं तो वैसा नहीं हूं, बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं,

0: मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है? मैं यही सब सोचता विचारता रहा, पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई। महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई। पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा। सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी, और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं तो उन्हें पागल कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त तो और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका, और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई, फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ। जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए, और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो? लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।
1: इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहल कर बातचीत की, और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्षस्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
2: कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था।
1: इधर इन 3 दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था, ये कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष हैं। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है।
2: वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्कसंगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी।
1: अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं।
0: ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी, उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था।
2: श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण, भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी।
1: सन 1884 ईस्वी में किसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा,
3: तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है, नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए।
1: सब जीवों पर दया कहते ही श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्ध बाह दशा में अवस्थित होकर कहने लगे,
3: जीव पर दया, अरे कीटाणु कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा।
1: ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्रनाथ ने कहा, आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क कठोर और मतांतर रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया। आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है, संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: विनोबा जी के पिताजी की नियम निष्ठा भी अत्यंत कड़ी थी। हरिपुरा कांग्रेस में वे गए थे। वहां निवास के लिए घास फूस की झोपड़ियां बांधी गई थी। झोपड़ियों के सामने ही बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ किसी को चूल्हा स्टोव जलाना मना है। उन्होंने नियम पढ़ लिया था। रोज सुबह नदी के उस किनारे जाते, साथ में दूध ले जाते, वहां चूल्हा सुलगाकर दूध गर्म करके नहा धोकर लौटते। दिन भर दूध के अलावा और कुछ भी नहीं लेते थे और उनका आतिथ्य प्रेम अद्भुत था। विनोबा जी बताते हैं,
1: जब मैं साबरमती आश्रम में रहता था तब एक बार जमनालाल जी को पिताजी से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने पिताजी को पत्र लिख दिया था कि फलानी गाड़ी से आऊंगा। उस वक्त माँ नहीं थी, पिताजी अकेले ही रहते थे और रसोई भी खुद ही बनाते थे, इसलिए आतिथ्य भी उन्हें ही करना था। जमनालाल जी मारवाड़ी थे, इसलिए पिताजी ने मारवाड़ी खान पान पद्धति, परोसने की पद्धति, थाली कटोरी आदि की जानकारी प्राप्त की। मारवाड़ी को तो फुलका रोटी चाहिए, ये पता चलते ही उन्होंने बाजार से गेहूं लाया, खुद पीसकर आटा तैयार किया और उसके फुलके सेंके। जमनालाल जी ने आने पर देखा कि घर में नौकर कोई नहीं था, सब कुछ पिताजी ने ही किया था, तो उन्होंने पूछा,
2: घर में नौकर नहीं था तो फिर इतना सारा कष्ट आपने क्यों उठाया?
3: उसमें कौन सी बात थी, यह तो हमारा आतिथ्य धर्म है।
2: आपके पिताजी तो इतने स्निग्ध और प्रेमल है, आप क्यों इतने रूखे सूखे हैं?
1: रूखा सूखा राम का टुकड़ा।
0: विनोबा के पिता अत्यंत स्वावलंबी वृत्ति के थे। अपना कोई भी काम वे माँ को या बच्चों को नहीं करने देते थे। माँ के जाने के बाद 30 साल वे अकेले रहे, परंतु कभी किसी से थोड़ी भी सेवा उन्होंने नहीं ली। एक बार उनसे पूछा कि
1: बर्तन मांजने या झाड़ू लगाने के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख लेते हैं?
3: कितना भी अच्छा नौकर हो, उससे कुछ गलती हो जाएगी तो फिर हम कुछ कटु बोल देंगे। उससे बेहतर यही है कि अपना काम खुद करे। इसमें थोड़ा शर्म तो होता है, लेकिन किसी को दुख देने का प्रसंग नहीं आता।
0: ये घटना तब की है जब विनोबा 16 साल के हुए। बचपन में विनायक बहुत आग्रही स्वभाव के थे। जो तय किया वो पूरा होना ही चाहिए। इससे पिताजी बहुत नाराज भी हो जाते थे, कभी कभी तो पिटाई भी करते, परंतु उस वक्त वे लोकमान्य तिलक के कोर्ट में कहे गए शब्द दोहराते,
1: भले ही आप मुझे गुनहगार मानिए, मैं तो निर्दोष ही हूँ। आपके न्यायालय से और एक बड़ा न्यायालय ईश्वर का न्यायालय ऊपर है। शायद ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी कि कष्ट सहकर ही मेरा काम पार पड़ेगा।
0: इस संदर्भ में बचपन के वे प्रसंग याद करके बहुत बार विनोबा जी पेट पकड़कर हंसते हैं और कहते हैं,
1: मेरा ये रोज का नियम था कि बाहर भटककर रात को घर वापस लौटता था। भोजन करके सोने के लिए जाने से पहले पिताजी के पास हाजिरी लगती थी। दिन भर के कार्यक्रम में उनकी दृष्टि से मेरी कोई ना कोई शरारत या गैर व्यवस्था नजर आ ही जाती थी। कभी उनकी किताब उसी जगह न रख कर दूसरी जगह रख दी, या ऐसा ही कुछ और हो गया, तब फिर मार पड़ती। एक भी दिन खाली नहीं जाता था, ये हमारा नित्य क्रम था। कभी कभी माँ से पूछता, माँ तुम मुझे क्यों नहीं मारती हो?
4: क्या उधर से तुझे कम मार पड़ती है कि मैं उसमें और जोड़ू?
0: परंतु एक दिन कुछ दूसरा ही हुआ। रोज के जैसा घूमकर घर आए, भोजन आदि से निपट गए, सब कार्यक्रम खत्म हुआ, परंतु उधर से कोई बुलावा नहीं आया। विनोबा तो राह देखते ही रहे और समय बढ़ता गया। उन्हें नींद आने लगी और नींद लग भी गई।
1: आश्चर्य, बिना मार खाए मैं सोया, सुबह उठा, दिन भर का कार्यक्रम चला, रात हुई, खाना पीना हुआ, परंतु दूसरे दिन भी पिताजी का बुलावा नहीं आया। क्या कहा जाए, बिना मार खाए दूसरे दिन भी मैं सोया। और फिर तो तीसरा दिन, छठा दिन, पूरा सप्ताह बीत गया, हमें मार ही नहीं मिली। अरे क्या बात है। और एक दिन भेद खुला, अब तुम 16 साल के हुए ना।
0: विनोबा के पिता संगीतज्ञ भी थे। आखिर के 30 सालों में ही अपना संगीत का अध्ययन उन्होंने पूरा किया। एक मुसलमान गवैये के पास उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 14-14 घंटे वे रियाज करते थे। अपने घर में ही अनेक लोगों को उन्होंने गायन और वाद्य संगीत सिखाया। हमारा पुराना मुसलमानी गायन लुप्त न हो जाए, इस दृष्टि से अतिशय परिश्रम से नासिर खान का मृदुंगबाज और शेख राहत अली का ठुमरी संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया। उनकी अभ्यास की पद्धति कुछ अलग ढंग की थी। वे कहा करते थे,
3: जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारे क्लास में कोई लड़का एक विषय में होशियार तो कोई दूसरे विषय में होशियार रहता था, कोई भाषा में आगे था तो कोई गणित में। यह देखकर मुझे ताज्जुब होता था। एक विषय में बुद्धि चलती है तो अन्य विषयों में क्यों नहीं चलनी चाहिए? मुझे जिन विषयों की आवश्यकता लगती है उन सब में मेरी बुद्धि चलती है।
0: विनोबा की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने छठी कक्षा तक की पढ़ाई घर पर ही करवाई। अगली शिक्षा के लिए बड़ौदा के कला भवन में भेजा। चूंकि विनोबा ने अंग्रेजी तीसरी कक्षा तक पढ़ी थी और वहां प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए विद्यार्थी आए थे, अतः विनोबा को वहां प्रवेश नहीं मिला। अंत में पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का निर्णय लिया और घर पर अंग्रेजी तथा गणित का अभ्यास शुरू हुआ। उन्होंने एक बात और देखी, वो ये कि विनोबा जितना अभ्यास करते थे उससे ज्यादा घूमते थे। उन्होंने ज्यादा अभ्यास भी देकर देखा, विनोबा उसे भी बखूबी करके घूमने निकल जाते थे। अंत में पिता ने विनोबा को स्कूल भेजा। वहां का अपना अनुभव बताते हुए विनोबा कहते,
1: वहां भी मेरा यही उद्योग था। मैं स्वयं तो घूमने जाता था और मित्रों को भी घर से खींचकर घूमने ले जाता, उन्हें पढ़ने नहीं देता था। मेरे मित्र बाबाजी मोघे मेरे डर से किसी मंदिर में छुपकर पढ़ते थे। मैं वहां से भी उन्हें ढूंढ निकालता और जबरन अपने साथ ले जाता था। उस समय मैं एक ही वाक्य कहता था, विश्वविद्यालय के भ्रम का कुमड़ा हर साल फूटता और उसमें से सैकड़ों बीज बाहर आते हैं।
0: उस समय विनोबा को दो आदतें थीं, पढ़ना और पढ़ाना। जरा भी समय मिलता तो वे घूमने निकल जाते थे। उनके मित्र रघुनाथ धोत्रे कहते थे कि विनया तुम्हारे पांव में चक्र है, और माँ कहती थी,
4: विनया पिछले जन्म में जरूर तू बाघ रहा होगा। एक तो तुम्हारी नाक तीव्र है, थोड़ी सी महक तुझे सहन नहीं होती, और दूसरा तुझे सारा दिन घूमना अच्छा लगता है।
0: बड़ौदा के सारे रास्ते विनोबा के परिचित हो गए थे। कोई भी समय उनके लिए प्रतिकूल नहीं था। दौड़ना बहुत पसंद था, इसीलिए खूब दौड़ना, कितना दौड़ा इसका कोई हिसाब नहीं रहता। अपनी घटना का जिक्र करते हुए विनोबा कहते हैं,
1: एक बार रात को 12 बजे मैंने दौड़ना शुरू किया। बड़ौदा राजमहल को जो रास्ता जाता था उस पर मैंने दौड़ना शुरू किया था। पहरे पर जो सिपाही था उसने नियमानुसार जोर से आवाज लगाई, हुकुम डर। वस्तुतः हु कम्स देयर का अभ्रंश था। मैंने ध्यान नहीं दिया, दौड़ता रहा, और जब मैं उसी रास्ते वापस आया तो सिपाही ने मुझे रोका और पूछा, क्यों दौड़ रहे हो? मैंने कहा, व्यायाम के लिए। वो बोला, रात एक बजे कोई व्यायाम के लिए दौड़ता है? कुछ नहीं, तू तो चोरी करने वाला होगा। तो मैंने पूछा, चोरी करने वाला जिस रास्ते से जाता है क्या वो उसी रास्ते से वापस भी आता है? वो चुप रहा और मुझे जाने दिया।
0: एक बार दिवाली के दिन किस घर में कितने दिए जलाए या नहीं जलाए गए ये देखने निकले। तीन दिन घंटों सभी गलियों में चक्कर लगाए विनोबा ने, परंतु बड़ौदा में भी एक घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में दिया न जला हो। यहां तक कि मुसलमानों के घरों में भी दीपक जले थे। विनोबा जी अलग अलग मंदिरों में जाते थे। उन्होंने अपने कॉलेज के पास के एक मंदिर का नाम परीक्षेश्वर रखा था, क्योंकि परीक्षा के दिनों में दर्शन के लिए और परीक्षा में पास करवा दो इसका आशीर्वाद मांगने वालों की भीड़ वहां रहती थी। विनोबा जी बताते हैं कि बचपन में उन्हें गणित विषय बहुत ही प्रिय था। उनके तीन अत्यंत प्रिय ग्रंथों में यूक्लिड की भूमिति का विशेष स्थान है।
1: मेरा सारा ध्यान स्कूल की घंटी पर रहता था, पीरियड खत्म हो और कब बाहर जाने को मिले। एक बार प्रोफेसर साहब कुछ नोट्स लिखा रहे थे, सब विद्यार्थी लिख रहे थे, मैं नहीं लिख रहा था, सुन रहा था, और दोस्तों द्वारा पूछे गए गणित के सवालों को हल करने में तल्लीन था। प्रोफेसर ये सारा तमाशा देख रहे थे। जब लिखने का काम पूरा हुआ तो लापरवाही देखने की दृष्टि से उन्होंने कहा,
5: विनायक अब तुम अपने नोट्स उठाकर सुनाओ।
0: विनायक खड़ा हुआ और धड़ल्ले से अपने नोट्स पढ़ने लगा, मानो सचमुच में नोट्स लिखे हो। प्रोफेसर साहब तो अवाक रह गए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना लिखे इस तरह नोट्स सुनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा,
5: जरा तुम्हारे नोट्स तो देखें।
1: आप मेरे नोट्स नहीं पढ़ सकेंगे।
0: प्रोफेसर ने देखा कॉपी में सचमुच ही कुछ भी नहीं लिखा था, कॉपी कोरी थी। एक बार प्रोफेसर गणित का एक कठिन सवाल विद्यार्थियों को समझा रहे थे। प्रश्न हल किया और उसका उत्तर किताब के उत्तर से मिलाने लगे। उत्तर भिन्न था। फिर से सवाल जांचा तो वही उत्तर। गलती कहां थी पता नहीं चलता था। शिक्षक को विनायक के गणित ज्ञान का पता था, इसीलिए उन्होंने कहा,
5: विनायक तुम देखो तो यह प्रश्न।
1: साहब आपका उत्तर सही है, किताब में उत्तर गलत छपा है।
0: विनोबा के जवाब में गहरे आत्मविश्वास की झलक देखने को मिलती थी। गणित के किसी भी सवाल को हल किए बिना वे छोड़ते नहीं। उनके इस आदत के कारण कॉलेज के प्रथम वर्ष में तो फेल होते होते रह गए। परीक्षा में गणित का पहला सवाल ही गलत निकला। उसे हल किए बिना वे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। जब समय पूरा होने को आया तब उनके ध्यान में आया और इस प्रश्न को छोड़कर दूसरे 3-4 सवाल थोड़ी ही देर में कर दिए और उनको 33 नंबर मिल गए। फेल होते होते बचे। एक बार कक्षा में गणित के प्रोफेसर गणित पढ़ा रहे थे, उसमें विनायक ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब प्रोफेसर साहब तुरंत नहीं दे पाए। उन्हें कहना पड़ा कि
5: इसका जवाब मैं कल सोच कर दूंगा। इतने साल से मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं परंतु आज तक किसी ने ऐसा सवाल पूछा नहीं था। तुम लोगों को लगता होगा कि मैं कितनी तत्परता से पढ़ाता हूं, परंतु यह तो मैं वर्षों से सिखाता आया हूं, तो यंत्रवत काम चलता है। आधी नींद में भी सिखाने की मेरी आदत है, परंतु तुम्हारा सवाल अलग प्रकार का है, उसका जवाब मैं कल दूंगा।
0: विद्यार्थी अपनी गणित की उलझने उनके पास ले आते। स्वभाव तो ऐसा था कि उनसे बात करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सबके कागज पर अपना अपना प्रश्न तथा नाम लिखा रहता था, उसी कागज के पीछे हिसाब सुलझा कर लिख देते थे। उनकी दोनों जेबें ऐसे कागजों से भरी पड़ी रहती थी, एक जेब में हल किए हुए प्रश्न, दूसरे में हल न किए प्रश्न। इसीलिए काका साहब कहते हैं,
2: विनोबा गणितज्ञ है, बिना हिसाब लगाए न वे कभी पढ़ते हैं, न कभी सोचते हैं, न कभी कोई काम हाथ में लेते हैं।
0: उनके जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में गणित दिखता है। खाने के लिए बैठेंगे तो दूध दही के चम्मच गिन गिन कर खाएंगे। कभी एक हाथ चम्मच अधिक कम निकला तो जयदेव की पुकार होगी, पूछताछ होगी। बाहर मैदान में चक्कर काटेंगे तो भी हिसाब से, सब कुछ हिसाब से चलता है। एक बार गंगा सागर की यात्रा में लॉन्च से जा रहे थे, दूर दूर तक पानी ही पानी था। बाबा पानी की ओर मुंह किए बाहर खुले में ही बैठे थे, लगता था कि किसी गहरे चिंतन में होंगे। एकाएक कहने लगे,
1: देखो यहाँ गीता पढ़ी है।
0: मीरा दीदी तो ढूंढती रही, कहाँ है गीता। थोड़ी देर के बाद ध्यान में आया कि लॉन्च के अग्रभाग पर मोटी रस्सी का एक गोल चक्र पड़ा था जिसके 18 आरे थे। गणित और गीता साथ साथ चलती है। फ्रेंच पढ़ाने वाले विनोबा के शिक्षक स्वभाव से मृदु और शांत थे। उनका स्वर कभी भी ऊंचा नहीं होता था, वे बात भी आवेश से नहीं करते थे। एक बार विनोबा की परीक्षा चल रही थी और विनोबा जी पेपर लिखने में मग्न थे। शिक्षक जी ने रोल कॉल लेने की शुरुआत की। जैसे ही विनोबा का नाम आया लगभग चिल्लाते हुए उन्होंने प्रेजेंट सर कहा। हाजिरी होने के पश्चात वे विनोबा के पास आए और बोले,
6: देखो विनायक, माना कि आप पेपर हल करने में मग्न थे, ये बात भले ही सत्य हो परंतु फिर भी जोर से चिल्लाना सही नहीं, आवाज हमेशा मृदु होनी चाहिए। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं पता है? बिकॉज आई लव यू।
1: इतना सुनना था कि मेरी आंखें भर आईं। फ्रेंच वाले सर मृदु स्वभाव वाले थे तो इतिहास वाले जोरदार थे। वे हमें हिस्ट्री ऑफ लिबरेशन पढ़ा रहे थे। उनसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वर्णन सुनते हुए ऐसा लगा कि पढ़ाई छोड़ अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़े।
0: पाठशाला के दिनों की बात है, उनका एक शिक्षक था। विद्यार्थियों को छड़ी से मारने की उनकी आदत थी। वे एक छोटी सी लकड़ी रखते थे और वो अलमारी में ताले में बंद करके रखते थे। किसी लड़के को पीटना होता तो अलमारी से लकड़ी निकाल कर पीटते थे। विनायक को ये पीटना ठीक नहीं लगता था। वो सोचता था कि किसी विषय के समझने का पीटने से क्या संबंध है। वो उस ताले की दूसरी चाबी भी ढूंढ लाया और ताला खोलकर अलमारी से लकड़ी निकालकर बाहर फेंक दी। मास्टर साहब ने लकड़ी ढूंढने के लिए सारा सामान उल्टा पलटा तो भी लकड़ी न मिली। तब वे दूसरी लकड़ी ले आए और फिर वही क्रम जारी कर दिया। विनायक ने दोबारा लकड़ी फेंक दी। एक लकड़ी गायब होती तो दूसरी आ जाती। यूं करते करते मास्टर महाशय की 4-5 लकड़ियां गुम हो गई। तब वे बहुत चिल्लाए, बार बार बच्चों से सख्ती से पूछने लगे,
7: किसकी किसकी शरारत है ये? कौन है वो बच्चा? ठीक है, मैं पता लगा लूंगा।
8: सर, सचमुच हमें नहीं पता कौन कर रहा है।
0: आखिरकार एक दिन शरारती लड़के का पता चल ही गया। और फिर क्या पूछना था, शरारती लड़के की अक्ल ठिकाने लाने के लिए उन्होंने विनायक को सजा सुनाई।
7: देखो, मुझे उस शरारती बच्चे का पता चल गया है जो मेरी लकड़ियां चुराता था। विनायक, उठो और 500 बैठक लगाओ, यही तुम्हारी आज की सजा है।
0: उस समय विनायक की उम्र 10 साल की थी। 500 बैठक मामूली बात नहीं थी, परंतु मास्टर साहब ने तो हुक्म दे दिया। बैठक गिनने के लिए सामने एक दूसरे लड़के को खड़ा कर दिया। वो लड़का तो विनोबा का दोस्त ही था, कभी कभी वो भी शरारत में भागीदार बनता था। वो गिनने लगा,
8: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 27, 28, 29।
0: परंतु विनायक को शिक्षक ने जैसा झूठ समझ लिया था, वैसा वो था नहीं। वो भी अपने मन से ही गिनती करता जा रहा था। उसने तय किया था कि 500 बैठकें करनी ही हैं। वो चौकीदार तो बीच बीच में रुक जाता था और 5-25 अंक खाकर फिर गाड़ी आगे चलाने लगता था। ऐसा करते करते 100-125 बैठकें हुई होगी और उसने कह दिया कि
8: सर, 500 बैठक हो गई,
7: बस हुआ, बैठो अब।
0: परंतु विनायक तो बैठक लगाता ही रहा, तो शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ,
7: क्यों रे, बैठता क्यों नहीं?
1: अभी मेरी 500 बैठक हुई नहीं।
7: अरे वह कह रहा है ना कि हो गई।
1: नहीं सर, अभी सिर्फ 123 हुई हैं।
7: खैर बैठ जा, फिर भी 18 बैठक ज्यादा ही हो गई।
1: मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आपने तो मुझे 500 बैठक लगाने का हुक्म दिया था ना, अभी तो 123 हुई हैं, तो फिर 18 ज्यादा कैसे हुई?
7: अरे लड़के, 500 यानी 100 और 5, 105 है कि नहीं, उस हिसाब से तेरी 18 ज्यादा हो गई।
0: शिक्षक ने भेद खोला और विनायक बैठ गया। ये मजेदार कहानी सुनाते हुए विनोबा जी कहते हैं कि
1: आज भी मैं वह आंकड़ा भूला नहीं, 123 यानी 1, 2 और 3, 18 यानी गीता माता के 18 अध्याय और 500 यानी 5 और 100। उस वक्त भी मुझे महसूस होता था कि शिक्षक विद्यार्थी संबंध यानी चेतन का चेतन से संबंध होना चाहिए। विद्यार्थी को पूर्ण मुक्ति का अनुभव आना चाहिए। विद्यार्थी से भी कुछ ना कुछ ग्रहण करने के लिए शिक्षक के दरवाजे खुले रहने चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थी पर ही भरोसा ना हो और वह चौकीदार रखे तो वह शिक्षक कैसा और वह विद्यार्थी ही कैसा? परस्पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण मुक्ति का वातावरण आवश्यक है।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस व्यक्तित्व की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है हवलदार ईश्वर सिंह। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नई दिल्ली से विष्णुपाद बराल और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लन शाहनवाज। नवंबर 1945 से 1946 तक चले एक ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान देश भर में गूंज उठा था ये नारा। दिल्ली के लाल किले में कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से ये मुकदमा चला और उस समय भारत की आजादी के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को इसने एकता के सूत्र में बांध दिया। इन्हीं तीन सैन्य अधिकारियों में से एक मेजर जनरल शाहनवाज खान की चर्चा आज इस कार्यक्रम में। मेजर जनरल शाहनवाज खान आजाद हिंद फौज के एक प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी और स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वो एक महान देशभक्त, बहादुर सैनिक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबियों में से एक थे। इसके साथ ही वो एक समर्पित राजनेता और सच्चे समाजसेवी भी थे। शाहनवाज खान का जन्म 24 जनवरी सन 1914 को रावलपिंडी के पास स्थित गांव मटौर में हुआ था। उनके पिता का नाम टीका खान था, जो स्वयं एक फौजी थे। पारिवारिक वातावरण से ही उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक सैनिक बने और राष्ट्र की सुरक्षा का काम करें। उन्होंने देहरादून के इंडियन मिलिट्री कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और सन 1935 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। इस तरह उनके बचपन का एक सपना पूरा हुआ। वो एक अत्यंत पराक्रमी और जांबाज सिपाही थे, जो मिट तो सकता था लेकिन टूट नहीं सकता था। यही कारण है कि सेना में उनकी विशेष पहचान रही और पदोन्नत होते हुए वो कैप्टन के पद तक पहुंचे। भारत भूमि की सेवा ही उनका अटल संकल्प था।

शाहनवाज खान ब्रिटिश भारतीय फौज में शामिल हो चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। शाहनवाज खान को दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती मिली थी। इसी बीच जापानियों ने सिंगापुर पर हमला कर दिया। सिंगापुर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना के साथ भारत से लगभग 60,000 भारतीय सैनिकों को सिंगापुर भेजा। इसमें कैप्टन के तौर पर शाहनवाज खान भी शामिल थे। भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन ब्रिटिश सेना की हार हुई। शाहनवाज खान को हजारों सैनिकों के साथ युद्धबंदी बना लिया गया। सिंगापुर जेल में शाहनवाज खान की भेंट अनेक क्रांतिकारी सैनिकों से हुई और भारत की आजादी के लिए उन क्रांतिकारियों के समर्पण से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। ये उनकी जिंदगी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और उन्होंने आजाद हिंद फौज की मदद से इन बंदी सैनिकों को रिहा करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंदी सैनिकों के सामने ओजस्वी भाषण दिया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की वाणी का प्रभाव बहुत गहरा था। सैनिक अपना संपूर्ण जीवन उन्हें समर्पित करने को तत्पर हो गए। इस तरह शाहनवाज खान सहित सैकड़ों सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और भारत माता की मुक्ति के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। ये शाहनवाज खान के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव था। नेताजी के विचारों

लिए युद्ध का इरादा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाहनवाज खान की देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता से बहुत अधिक प्रभावित थे। नेताजी ने उन्हें हुकूमत आजाद हिंद की कैबिनेट में भी शामिल किया था। सन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें मांडले में तैनात सेना की टुकड़ी का कमांडर नियुक्त किया। नेताजी का सपना था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज के सबसे योग्य और जाबाज सैनिकों की एक विशेष रेजिमेंट तैयार की। इस रेजिमेंट को भारतीय सीमा में घुसकर आजादी की लड़ाई का शंखनाद करने का दायित्व सौंपा गया। इस रेजिमेंट की कमान नेताजी ने शाहनवाज खान के हाथों सौंपी और ये सैनिक बढ़ चले निर्भय निर्द्वंद्व।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाहनवाज खान की बहादुरी और उनके समर्पण से अत्यधिक प्रभावित थे। नेताजी ने उन्हें मेजर जनरल की उपाधि प्रदान की थी। नेताजी की योजना के अनुसार शाहनवाज खान ने अपने सैनिकों के साथ पूर्वोत्तर भारत के कोहिमा और इम्फाल पर धावा बोला। इस लड़ाई में प्रमुख कमांडर के रूप में शाहनवाज खान ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सेना का नेतृत्व तो किया ही, अस्थायी रूप से इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा भी किया, जो भारत की आजादी के लिए नेताजी का एक निर्णायक अभियान था। बर्मा से भारत की ओर बढ़ते हुए जापानी सेना के समर्थन से उन्होंने आजाद हिंद फौज का अद्भुत नेतृत्व किया तथा भारत में प्रवेश करने के लिए मंच तैयार किया। दिल्ली चलो का नारा सैनिकों को उत्साह से भरता रहा। हालांकि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा स्थायी नहीं हो सका और मेजर जनरल शाहनवाज खान और उनके दल को अंग्रेजी सेना ने सन 1945 में बंदी बना लिया। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन पर दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। हर गली हर नुक्कड़ पर लोग नारा लगा रहे थे, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन।

शाहनवाज। अंग्रेजों ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन जनता के विरोध ने ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया। उनकी सजा को बर्खास्तगी में तब्दील कर दिया गया तथा आजाद हिंद फौज के इन अफसरों को अर्थदंड का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। ये मुकदमा आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई ऊर्जा से भर दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सेना से सीधे युद्ध कर मेजर जनरल शाहनवाज खान ने स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। आजादी के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा मेरठ से सांसद चुने गए। वो सन 1952 से 1971 तक लगातार 4 बार निर्वाचित हुए तथा उन्होंने रेलवे, कृषि, श्रम तथा इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। सन 1956 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए कमेटी बनाई गई, तो शाहनवाज खान इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 9 दिसंबर सन 1983 को अंतिम सांस ली। वो एक महान देशभक्त थे, जिन्होंने अपने देश को ही अपना मजहब माना और अपनी हर सांस उसे समर्पित कर दी। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस व्यक्तित्व की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस व्यक्तित्व की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

इतिहास के सफ़ों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: श्रोताओं, कबीर साहब सीधे हमारे मन की चालाकी को पकड़ते हुए कहते हैं, मन जाने सब बात, हमारा यह जो मन है यह कोई सीधा साधा नहीं है, यह सब कुछ बहुत अच्छी तरह जाने यानी जानता है। इसे पता है कि झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, किसी का दिल दुखाना या लालच में पड़ना गलत है। जानत ही अवगुण करें, पर कमाल की बात देखिए, यह सब कुछ जानता ही यानी जानते हुए भी जानबूझकर वही अवगुण यानी अवगुण और गलतियां बार बार दोहराता है, तो ऐसे इंसान का क्या हष्ट होगा। अगली पंक्ति में कबीर एक सीधा और तीखा सवाल पूछते हैं, काहे की कुशलात, जो इंसान सब कुछ जानते हुए भी गलत रास्ते पर जा रहा है उसकी कुशलात यानी उसका कल्याण या भलाई कैसे संभव है। कर दीपक कुएं पड़े, उसकी हालत तो ठीक वैसी ही है जैसे मनुष्य अपने कर यानी हाथ में जलता हुआ दीपक यानी उजाला लेकर भी सीधे जाकर कुएं यानी कुएं में कूद पड़े। हाथ में रोशनी होने के बाद भी अगर कोई कुएं में गिर रहा है तो दोष अंधेरे का नहीं बल्कि उसकी अपनी मूर्छा का है। यह दोहा विवेक और पाप के दार्शनिक विज्ञान को प्रकट करता है। भारतीय दर्शन में माना गया है कि केवल शाब्दिक ज्ञान होना ही असली ज्ञान नहीं है। जब तक हमारा ज्ञान हमारे आचरण में नहीं उतरता तब तक वह व्यर्थ है। कर दीपक हमारे उसी बौद्धिक ज्ञान का प्रतीक है जो हमारे पास किताबों, सत्संगों और विचारों के रूप में मौजूद तो हैं, लेकिन हमारा मन वासनाओं के वश में होकर उस ज्ञान के प्रकाश को अनदेखा कर देता है। कबीर समझा रहे हैं कि अज्ञानवश की गई गलती उतनी आत्मघाती नहीं होती जितनी ज्ञान के अहंकार में रहकर जानबूझकर किया गया आत्मछल होता है। ऐसी चालाकी जीव को और गहरे बंधनों में धकेल देती है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से एक बहुत ही ईमानदार सवाल कीजिए। जब हम किसी के प्रति मन में कड़वाहट लाते हैं, जब हम पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं या जब हम कोई चालाकी करते हैं, तो क्या हमारा अंदर का विवेक हमें टोकता नहीं है? हमारा मन सब जानता है पर फिर भी हम खुद को सही साबित करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। आज कोशिश कीजिए इस आत्मछल को रोकने की। अपने हाथ के इस दीपक यानी अपने विवेक के प्रकाश को केवल दूसरों को दिखाने के लिए मत रखिए बल्कि इसके उजाले में अपने कदमों को देखिए। जब आपका मन जानते हुए भी किसी अवगुण की तरफ बढ़ने लगे तो वहीं ठहर जाइए और उस राम नाम की चेतना को जगाइए जो आपको कुएं में गिरने से बचा लेती है। जब ज्ञान आचरण बन जाता है तभी जीवन में सच्ची कुशलता आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
2: प्रॉम्प्टर ऑफ फॅटलिझम, हिज फिलॉसॉफी मीन्स बिलीफ इन डिव्हिनिटी। ही सेज मेक अँड ब्रेक इज इन नो वन्स हँड्स, ऑक्युरन्सेस शेप देमसेल्व्स, नो वन कॅन डिस्ट्रॉय मिझरीज ऑन इन्क्रीज देम। अजित केशकंबाल वॉज the abolitionist, scientism was his philosophy. He said, yajna, rituals, soul are vain. no paradise, no hell, no escape from the soul, from the worldly miseries. There are no cycles of birth and death. Of 84 lakh cycles of yonis, says he, Pakhuddha Kanchiyan, the promoter of reciprocity, life is made up of earth, fire, air, space, pains and pleasures, and the soul are the seven great elements. They are self-made and eternal. Nothing can destroy them. Sanjay Belaput was the prompter of distractionism. Skepticism is also its name. Man has not to experience the fruits of virtues or vices after the death, or soul is non-existence, says Belaput. Diganthanath Put, the promoter of Chaturya Samarthavad, ingenuity. Soul has rebirth due to committed vices. In order to avoid vices, avoid violence, avoid theft, avoid lies, observe celibacy, avoid accumulation, were his lessons. Philosophy of contemporaries. Bhatatagata, you felt inadequate to some extent and of ignorance in some other ways. Purna Kashyap, Pakhuddha Kanchiyan, aloof from social responsibility, their philosophies can go to the extremity of killing impurity. Man may be the slave of the fate. If Makkali Gosal is to be accepted, consumption and merrymaking abundant because of Ajit Keshkambal and Sanjay Belput will cause life free wandering. A man's life will only asceticism and penance. Because of Niganthanath Put, philosophy before the welfare of man, his upliftment and liberty of his thoughts. Man can be rational. He would be virtuous without rituals. Intellect be in his possession. His life be based on ethics, science and concise in his vision. Bhatatagata, you checked spirituality science. And for cultural development through concise, you prepared a strong pool of rites with the help of your five percepts, Panchashil, imparted lessons of morality, and with the help of your eight percepts, Ashtashil, made moral invention more minute. You were not extreme abolitionist or ritualist. Your way is a middle way, rituals in spirituality. You swept away and accepted stern logic in science. Therefore, you aren't an abolitionist, or you aren't blind believer, blind worshipper of religion. Your path of progress, of humanity, of human welfare, midway Arya Eightfold Path, path for human right, humanitarian. Bhatatagata, your Dhamma teaches morality to man and yields the crop of wisdom, modesty, compassion.
3: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आपले खानदेश, आपली मानसर.

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुशी का जो इंडेक्स है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हर रोज हम कितना खुश रह पाते हैं, क्या हर पल खुश रह पाना संभव है। ऐसे बहुत से सवाल होंगे, बहुत से बिलीफ सिस्टम हमारे होंगे कि नहीं, हर पल की खुशी तो नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में खुशी है तो कभी गम भी होगा। और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमें गम का पता ही नहीं चला तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलती जाती हैं, लेकिन अगर इस श्रृंखला को देखते हैं तो एक बात सामने आ रही है, खुशी मेरी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, मैं खुद क्रिएट करता हूँ। अगर मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ तो वो क्रिएट कैसे करूँगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। एक पूरी साइकिल को हमने देखा है कि किस तरह से मेरा अपना भाग्य जो मुझे अभी तक मैं कह रही थी मिल रहा था वो मैंने ही दिया था और तब मुझे मिला। तो ये एक बहुत अच्छा, एक पावरफुल थॉट क्रिएट हुआ, खुशी का लेवल बड़ा, खुशी का इंडेक्स अच्छा पहुंचा। अब एक बात और आ जाती है, डिपेंडेंसी मेरे अपने थॉट पर आई। अभी तक हम देख रहे थे कि खुशी जो है वो कहाँ कहाँ डिपेंड कर रही थी, तो खुशी मेरे डिपेंड कर रही है मेरे थॉट पर। इट मींस माय थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
0: तो अब इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को मैं किस तरह से देखूं?
1: एक बार जब हमें समझ में आ गया कि जो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं सारा दिन वो हमारी इस पूरी पर्सनालिटी को बनाता है एंड वही फिर हमारे भाग्य का भी निर्माण करता है, तो सारा फोकस अब शिफ्ट होकर मेरे ऊपर आ जाता है कि चाहे बाहर सिनारियो कुछ भी हो, फिर उस सिनारियो में भी अगर आई कैन क्रिएट पावरफुल थॉट्स, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिनारियो। घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, रिश्तों में कुछ संस्कार स्वभाव का टकराव है, ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो भी मेरे पास चॉइस है कि अगर आई एम एबल टू क्रिएट द राइट थॉट्स एट दैट टाइम, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिचुएशन एंड नॉट ओनली क्रॉस द सिचुएशन, आई कैन चेंज द सिचुएशन, है ना। परिस्थिति मेरे संकल्पों से बदलती
0: थी। अल्टीमेटली मेरा मोटिव जो था वो सिचुएशन बदलने का था।
1: या सिचुएशन को तो चेंज करना ही है ना। अगर मेरा रिश्तों के साथ, सपोज किसी के साथ कुछ टकराव चल रहा है, अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आई वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन ताकि वो जो रिश्ता है हमारा इट बिकम्स अगेन स्मूथ, अगेन फ्लोइंग। लेकिन हम सोच रहे थे वो ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि पावर मेरे हाथ में है कि मैं ठीक करूंगी तो मेरे लिए तो एटलीस्ट पहले ठीक हो जाएगा, एंड फिर मेरे लिए ठीक हो जाएगा तो वो आगे भी ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेट करेंगे कि वो ठीक करेंगे तो ठीक होगा, तो इट इज जस्ट नॉट हेडिंग एनीवेयर। तो एक चीज जो हम अवेयरनेस के साथ अब जीवन को जीना शुरू करें कि ब्लेम करना बंद कर दें कि इनकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, मेरे पास पावर है। तुरंत अपने आप को रुक कर एक मिनट देखिए, व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग, अभी अभी कुछ हो रहा है, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड एंड वन मिनट जस्ट चेक व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग। जैसे आपने उस दिन भी कहा, बहुत मुश्किल है थॉट्स को देखना, हम नहीं देख पाते। मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमने देखा नहीं,
0: आदत नहीं है,
1: हमने देखा नहीं है। थॉट्स है क्या? थॉट्स है एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो यहाँ चल रही है। अब हम देखते नहीं तो वो बैकग्राउंड में चलती ही जाती। अब जैसे ही हम उसको देखना शुरू करते वो फोरग्राउंड में आ जाती है। आई विल बिकम अवेयर, फर्स्ट स्टेप है अवेयर होना के व्हाट आर द थॉट्स आई एम क्रिएटिंग। जब तक मैं अवेयर नहीं होंगी तो चेंज करना
0: पॉसिबल
1: इम्पॉसिबल है। अब थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वी वॉन्ट टू चेंज द क्वालिटी। दुनिया में भी आज पॉजिटिव थिंकिंग, दिस हैज बिकम द थिंग, लाइक उसमें बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है, हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि थॉट्स का सोर्स क्या है, व्हाट इज क्रिएटिंग द थॉट। थॉट तो एक एनर्जी है जो अंदर क्रिएट हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई रॉ मटेरियल तो अंदर जाएगा ना, जिसके बेसिस पर ये थॉट क्रिएट होता। तो थॉट्स के जो बेसिस है, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन। हम क्या इंफॉर्मेशन सारा दिन अंदर लेते हैं, वो दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू ऑल आर सेंस ऑर्गन्स। हम सारा दिन क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या भोजन खाते हैं, क्या अरोमा हम लेते हैं, क्या हम टच करते हैं। अब जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट इनटू द हैबिट कि सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ लिया एंड हमें लगता है ओ दिस इज अगेन नेचुरल में आ जाता है कि बेड से उठे नहीं, कि उठते भी नहीं है, कई बार बेड में ही न्यूज़पेपर आ जाता है, तो फर्स्ट पेज पढ़ा, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ किसी पिता ने अपने बच्चों के
0: साथ। एक और बात है, सुबह जो पढ़ा है वो सारा दिन रहता भी है, सारा दिन आपके साथ वो न्यूज कंटिन्यूस रहती है आपके साथ।
1: सिर्फ न्यूज तो रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जब आप सो कर उठे तो आपके माइंड को कितना रेस्ट मिला है, यू नो, आपका माइंड एकदम साइलेंट हो गया है। जब ये साइलेंट हो जाता तब इसकी अब्सॉर्प्शन पावर बहुत हाई है। अब इसमें आप जो भी डालेंगे वो बहुत इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो द माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, यू नो, ब्लॉटिंग पेपर ऐसे चूस लेता है। तो साइकोलॉजिस्ट बताते कि सुबह के 2 घंटे करीब हमारी अब्सॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट होने लगता, तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। साइलेंट माइंड, तो साइलेंट माइंड होते ही क्या हुआ, जो कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड है वो साइलेंट हो गया, आप सब कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड पर आ गए। अब जो भी आप अंदर डालेंगे वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड पर ही हमें वो डालना होता है जो हमें क्रिएट करना है सारा दिन के लिए। अब साइलेंट माइंड है, कॉन्शियस लेयर साइलेंट है, सबकॉन्शियस लेयर एक्टिवेटेड है, और उसमें आपने डाल दिया कि यहाँ अर्थक्वेक हुआ, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ मेट्रो का वो कुछ एक्सीडेंट हो गया। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम सबकॉन्शियस के अंदर सुबह सुबह डाल रहे हैं। दे आर वर्ड्स ऑफ वायलेंस, फियर, हेट्रेड, इनसिक्योरिटी, ये डाल दिया, तो सुबह सुबह बीज कौन सा बोया। फिर हम कहते हैं सारा दिन क्यों फियर है, क्यों इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे हल चलाकर मिट्टी को एकदम वो करके बीज कौन सा डाला था सुबह सुबह, फियर, वायलेंस, इनसिक्योरिटी। फिर सारा दिन आप चलो बाहर, आपकी लेयर फाउंडेशन कौन सी है, वही है, तो वो जो फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह भरी, उसी क्वालिटी की थॉट सारा दिन आप क्रिएट करेंगे। भले उस देश से आपका कोई लेना देना नहीं जिसके बारे में आपने सुबह पढ़ा, उन लोगों से नहीं है, लेकिन वर्ड्स कौन से डाले थे सुबह सुबह, इट इज नॉट इस देश में ऐसा हुआ, इट इज क्या हुआ, वो वर्ड आपकी सबकॉन्शियस लेयर में फिट हो गया। अब वही वर्ड्स आपके थॉट्स को क्रिएट करते हैं, बिकॉज दैट्स द एनर्जी दैट आई गेट ड्यूरिंग द डे। अब आप कितना भी ट्राई करो पॉजिटिव सोचना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप शाम को घर पहुंचते हैं, कोई घर पर नहीं पहुंचा टाइम पे, आप फोन भी ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं फोन, नॉर्मल थॉट्स कौन से आने लगते हैं लोगों के अंदर,
0: एक्सीडेंट।
1: सी, आपने इतना इजीली बोल दिया एक्सीडेंट हो गया, क्यों एक्सीडेंट हो गया, व्हाई डज दिस थॉट कम टू मी, अपने ही परिवार के सदस्य के लिए कि एक्सीडेंट हो गया होगा, क्योंकि सुबह सुबह मैंने क्या भरा था अपने अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिंपल प्रोसेस क्या करना है, मॉर्निंग उठते ही सबकॉन्शियस लेयर जब एक्टिवेटेड है, इसमें बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो भर दिया जाता है अंदर। तो जैसे ही वो पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स अंदर भरे जाएंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होगी, वो उसी क्वालिटी की क्रिएट होगी। तो एक है सुबह में कौन से इन्फॉर्मेशन भरते, और एक है रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम बहुत क्रिटिकल है। अब मोस्टली आजकल हम रात को सोने से पहले क्या भरते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ अगेन मीडिया, एंड वो सुबह है न्यूज़, शाम को है एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के नाम पे भी इट इज़ ईदर फियर और पैनिक, या यू नो, संबंधों में मिस्ट्रस्ट, रोना धोना सीरियल के अंदर। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, सो गए, रात को कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी। फिर जो रात को क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगी, सुबह उठेंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स
0: क्वालिटीज के साथ उठेंगे।
1: सो बेसिकली स्लोली इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर हम ये ध्यान रखें कि सुबह सुबह उठते ही पहली चीज हम क्या अंदर डालते हैं, इट्स लाइक ब्रेकफास्ट, कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होना चाहिए, आपका ब्लॉटिंग पेपर बहुत पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से भरा होना चाहिए। एनीवन कैन ट्राई दिस, सिर्फ 1 महीने के लिए आप सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर मत देखो, टेलीविजन नहीं देखो, आप पढ़ो न्यूज़पेपर, but slightly later on. You don't have to do it wo subah ka, you know, 6 se 8 ya 6 se 9 baje ke beech. Aur uski jagah aap kuch aur padho. कई लोग कहते ठीक है हम पेपर नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसकी जगह कुछ और तो आप पढ़ेंगे जिससे वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भरता. इतना सा करने से यू विल सी कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है. भोजन ही अंदर अगर नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से क्रिएट होगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने सुबह सुबह ये डाला अपने अंदर कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, परमात्मा परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है. अब रात को मेरे घर कोई लेट है, कोई नहीं पहुंच रहा, आई वुडंट थिंक ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज आई हैवंट फिटेड दैट इंफॉर्मेशन इन द मॉर्निंग. आई विल से आ जाएंगे,
0: कम बैक, हाँ, वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ.
1: कुछ नहीं हुआ,
0: बैटरी खत्म हो गई होगी, यू नो, लाइक सी सो मेनी
1: वो थॉट्स है ना, वो आपकी थॉट्स है. अब इसी में अगर आप देखो, अगर मैंने ये सोचा बैठकर एक्सीडेंट ना हो गया, उनको पता नहीं क्या हो गया, अगर उनको खो गया तो हमारा घर कैसा चलेगा, मेरा जीवन कैसे होगा, बच्चों को मैं कैसे, इतने सारे थॉट्स क्रिएट कर दी. आधा घंटा एक घंटा इस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. अब वो फाइनली तो पहुंच गए घर पे, हम कैसे ग्रीट करेंगे उनको. सारी वो जो फ्रस्ट्रेशन हमने बिल्ड कर दी अंदर, वो सारी बाहर निकल आएगी. सामने वाला व्यक्ति भी कुछ किसी सीन से गुजरा है, तब वो लेट है, तो तुरंत उस टाइम हम दोनों के बीच क्या होगा, एक झगड़ा होगा. दिस इज माई डेस्टिनी फॉर द इवनिंग. ये डेस्टिनी किसने क्रिएट की? हम कहते उन्होंने की क्योंकि वो लेट थे, लेकिन नहीं, मैंने किस तरह की थॉट्स क्रिएट की जब मैं उनके लिए वेट कर रही थी. इफ आई वुड हैव रिमेन्ड स्टेबल एंड सेड आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में फोन तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा, फोन नहीं कैच कर रहा होगा, तो जब सामने वो व्यक्ति पहुंचेगा, हाउ विल आई मीट द पर्सन, एब्सोल्युटली ओके, सो देयर विल बी नो फाइट, टू डिफरेंट डेस्टिनीज. तो वी आर क्रिएटिंग इट एट एवरी स्टेप. सो वन सोर्स इज इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले. तो इसके लिए अगर हम सब अपने पास कोई ऐसा लिटरेचर रखे, जैसे एट द ब्रह्मा कुमारीज हम परमात्मा के महावाक्य सुनते, एवरी वन कैन चूज के वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सुबह 15 मिनट और रात को जस्ट सोते समय. आज रात को सोते समय या तो हम टीवी देखते, और अगर पढ़ते हैं तो वी आर रीडिंग अगेन फिक्शन या समथिंग वेरी वेरी स्टिम्युलेटिंग, तो माइंड को उतना स्टिम्युलेट करके फिर हम सो जाते हैं. तो शरीर तो सो गया लेकिन मन अभी भी बहुत एक्टिव चलता. फिर जब सुबह उठते तो स्थिति कैसी होती है? It just doesn't feel that you're energized.
0: अच्छा, रात को जब सो रहे होते हैं, जब सोते हैं, तो like काफी scientists से भी बात की, तो subconscious mind active रहता है.
1: हाँ, क्योंकि conscious mind sleep कर जाता. अभी यही अगर आप किसी बात से परेशान हो, आपके conscious mind में कोई thoughts चल रही है, तो आपको नींद नहीं आती ना. आप कहेंगे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं सो पा रहा. सो कौन नहीं पाता जिसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट ही नहीं होता. वो दिन की चीजों को, सारा दिन जो, या उसकी कोई परेशानी है, वो उसके ऊपर होवर कर रहा, तो वो स्पीड ऑफ थॉट बहुत फास्ट है, तो वो कॉन्शियस माइंड को साइलेंट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर उनको नींद नहीं आती. तब वो कोई ऐसा मेजर लेंगे, चाहे कि वो स्लीपिंग पिल है या कोई भी और तरीका, जिससे वो कॉन्शियस माइंड को दबा दें और उनको नींद आ जाए. तो अगर हम वो सब करने की बजाय सिर्फ कुछ अच्छा पढ़ें बैठकर, हमारी थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाए. यू नो, कोई बात मुझे परेशान कर रही है तो वो नेगेटिव बहुत सारी है. आई कांट स्लीप, डू नथिंग, जस्ट पिक अप समथिंग वेरी वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव एंड उसको पढ़ना शुरू करें. आपकी थॉट्स धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी, आपका माइंड स्लो डाउन होता जाएगा. और यही आप सारा दिन भी कर सकते हैं. जैसे कई बार हम कहते हैं कि सारा दिन में चलते चलते क्यों ऐसी, यू नो, ऐसी वाली थॉट्स आ रही है, नेगेटिव आ रही है. अगर आपके पास उस समय ऐसा कोई लिटरेचर है, जस्ट ओपन इट. क्योंकि कई बार हम खुद पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाते. यू नो, कोई बात एकदम मेरे चलती जा रही है, आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ इट. जस्ट ओपन एंड स्टार्ट रीडिंग.
0: कई बार क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो सारा, क्योंकि वो थॉट इतना पावरफुल होता है कि वो पूरा का पूरा पेज पढ़ जाएंगे और हमें कुछ याद.
1: रीड इट लाउडली.
0: हाँ,
1: रीड इट लाउडली, इट वर्क्स. सी, हमें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए. हम सोचते हैं नेगेटिव चल रहा है, चलने दो, पढ़ा मैंने नहीं समझ, रीड इट लाउडली, जैसे किसी और को पढ़ के सुना रहे हैं. क्योंकि जब आप जोर से पढ़ के सुनाते हैं आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन उसमें चली जाती है. कभी कभी जब हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं तो माइंड फिर भी कुछ और सोच. रीड इट लाउडली, इट हैज टू चेंज. होगा ही, नहीं चले उसी तरह दर्द के अंदर. जब धीरे धीरे इस तरह से अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब थॉट्स क्यों नहीं चेंज होंगे. इट हैज टू चेंज. एंड द अदर थिंग विच हैज अ डीप इम्पैक्ट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस. कि पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी
0: तो मेरे को कैसा अनुभव हुआ था,
1: तो वो मेरे जैसे ही मैं आपको इस बार मिलती हूँ फिर से वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे ऊपर फिर से वो सारा कसेट जैसे रिवाइंड हो जाता है और उसी क्वालिटी की थॉट्स फिर से चलनी शुरू हो जाती है. तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, लेट मी सिट एट द एंड ऑफ द डे एंड क्लीन इट आउट. क्लीन इट आउट, उस सिचुएशन को समझूं, मैं अपने आप को समझाऊं, ताकि मैं यहां से वो जो फाइल बिल्ड होती जा रही है वो एक्सपीरियंस की, वो नेक्स्ट सिनारियो में मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. क्योंकि बहुत बार हम पास्ट एक्सपीरियंस पे ब्लेम डाल देते हैं, क्या करूं मेरे साथ पहले इतनी बार ऐसा ही हुआ था तो मुझे डर तो लगेगा ही ना, पिछली बार भी ऐसा ही इन्होंने किया था तो मुझे इस बार डर तो लगेगा. तो इफ आई कीप सेइंग दैट, तो हर बार जब मेरे पास वो सीन आएगा तो मैं अपने आप को क्या करूंगी, एक विक्टिम जैसी फील करूंगी कि
0: और फिर मैं और फिर वो होने भी लग जाएगा.
1: बिकॉज आई क्रिएट दैट थॉट अगेन.
0: नहीं, एक और बात है कि सपोज आपने नहीं किया हो लेकिन वो सिचुएशन जब आई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था.
1: yes.
0: तो वो सिचुएशन आपके सामने कोई भी वो सिचुएशन फिर से आती है. yes. तो अच्छा, मुझे ये फियर रहता है कि वो फिर वैसे ही होगा.
1: सो आई बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम मिली, आपने मेरे से ठीक से नहीं बात की. अब ये बात मैंने पकड़ ली अपने अंदर और मैं सोच रही हूँ इन्होंने नहीं बात की. अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं कल आपसे मिलने वाली हूँ फिर से, आई नीड टू पहले बैठ कर वो पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन को मैं अपने साथ बात करके डिस्कस करके अपने साथ वो क्लीन आउट करूँ कि हाँ भले नहीं बात की बट इसको मैं अपनी सोच पर हावी दे होने वाली नहीं हूँ.
0: तो फिर मैं क्या करूँ, मैं उनको मतलब एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूँ?
1: वन इज गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, सेकेंड इज येस द अदर पर्सन कैन बी अपसेट, थर्ड इज इररिस्पेक्टिव मैं फिर भी ठीक से बात कर सकती हूँ. क्योंकि अदरवाइज मेरा रिश्ता आपसे बिगड़ता ही जाएगा क्योंकि वो मैं पास्ट एक्सपीरियंस को नेक्स्ट सीन पर
0: हावी
1: होने दूंगी. अब क्या होगा, कल शायद आपका मूड ठीक नहीं था लेकिन हो सकता है आज आप ठीक हो बिल्कुल, लेकिन आज मैंने वो पास्ट एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड किया.
0: हाँ.
1: तो वो मैं पास्ट एक्सपीरियंस लेकर जब आपके सामने आती हूँ तो मैं आपको उसी के थ्रू देखती हूँ एंड फिर आप ठीक भी हैं तो मुझे ठीक नहीं लगते क्योंकि मैंने आपके बारे में क्या बना लिया कि नहीं ये तो ऐसे ही हैं. तो इसलिए हम एक बहुत सुंदर चीज जो यहाँ पर करते एंड दैट इज हर रोज रात को थोड़ी देर बैठे अपने साथ, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, कि हर रोज रात को 5 मिनट्स 10 मिनट्स बैठ कर अपने दिन का चार्ट, जैसे लोग लेटर नहीं लिखते अपनी डायरी नहीं लिखते, तो डायरी में क्या करते सिचुएशंस को सिर्फ लिख देते हैं, आज ऐसा हुआ आज मेरे, देयर इज नो लर्निंग इन दैट, वो तो सिर्फ आपने एक रिकॉर्ड अपना बना दिया. लेकिन अगर आप अपने दिन को रिवाइंड करके उसमें जो आपने हर्ट क्रिएट किया किसी के प्रति, हेट्रेड क्रिएट किया किसी, वो जो आपने यहाँ अक्यूमुलेट कर लिए, अगर आप उसको लेट गो कर सकते हो, डिलीट
0: कैसे लेट गो कर सकते हैं, उन सिचुएशंस को दोबारा देखें,
1: उन सिचुएशंस को भले देखो बट डोंट गो थ्रू दैट पेन अगेन. उन सिचुएशंस को देखो और फिर अपने आप को देखो कि अगर मैं अपनी थॉट को थोड़ा सा चेंज कर लूँ इस टाइम, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस रिलेशनशिप, आई कैन नॉट गो ऑन लिविंग इन दिस पेन अगेन एंड अगेन. क्योंकि मैं आज अगर नहीं क्लियर करती इस हार्ड डिस्क को तो फिर ये जो सारा अक्यूमुलेट हो गया ये मेरे नेक्स्ट डे पर कैरी फॉरवर्ड होता है. दिस इज वॉट वी कॉल क्लीनिंग द हार्ड डिस्क एवरी, जो स्कैन डिस्क करते हैं ना, तो हर रोज अपना ये स्कैन करें कि येस उन्होंने जो किया सो किया, बट एम आई गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड दिस हर्ट. ये तभी हम कर पाएंगे जब हम रियलाइज करेंगे कि इररिस्पेक्टिव दूसरे का व्यवहार कैसा भी है, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिए. और इसको प्रैक्टिस करो. अब यू ब्रिंग अप दैट सीन, हो सकता है आज सुबह मुझे गुस्सा आया था किसी के साथ वर्क करते हुए, मैं रात को उस सीन को लाती हूँ अपने सामने, नए से डिड आई हैव एनी अदर चॉइस, कुड आई हैव हैंडल्ड दैट सीन इन एनी अदर वे, या गुस्सा करना ही ना. अगर मैं नहीं
0: देख ऑप्शन आ गई कि मैं कर सकती थी तो मैं गिल्ट में चली जाऊँ?
1: नो, गिल्ट में नहीं जाऊंगी. आई विल टेक दैट ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट टाइम. That is what is the right way of working with yourself. जब हम उस सीन को फिर से देखते हैं कि गुस्से से किया, दूसरा वाला तरीका भी तो था, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रही हूँ। जितना हम अपने साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर हम नहीं देखते हैं तो वो ही पास्ट एक्सपीरियंस, कल इन्होंने तो कल भी काम गलत किया था, इन्होंने तो आज भी गलत किया, मैंने कल भी गुस्सा किया था, मैं आज भी गुस्सा कर रही हूँ,
0: अब तो आज गुस्सा आना तो और जायज हो जाएगा,
1: तो वो फिर एंड देन दैट इज हाउ इट क्रिएट्स माय संस्कार। मेरा बहुत डीप, जो हमने कहा, थॉट से फीलिंग से एक्शन फिर हैबिट। हैबिट क्यों बन रही है, क्योंकि कहीं भी रुक कर थॉट को चेंज नहीं किया। तो अगर ये मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम हम अपने साथ स्पेंड करें, पुट इट इन योर डायरी, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, लॉट ऑफ वर्क गेट्स डन, लॉट ऑफ वर्क। अदरवाइज तो आप अपने ऑर्डिनरी तरीके से चलते जा रहे हैं, और उन सीन्स को लेकर अपने रिस्पॉन्सेस को देखना है, सिचुएशन को नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, अगर रिवाइंड भी करते हैं आज की दिनचर्या को, तो हम सिचुएशन को देखते और दूसरे लोगों को देखते, वो नहीं है मेरे कंट्रोल में, मुझे सिर्फ ये देखना है मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पर मैं हर्ट हुई, यहाँ पर मैं यू नो गुस्सा कर दिया, या व्हाट एल्स कुड आई हैव डन, दैट इज द प्रोग्रामिंग,
0: ताकि मैं मेरी स्टेबिलिटी रहती।
1: तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सिचुएशन के बारे में नहीं चिंतन करना, औरों ने क्या बोला था या क्या किया था उसके बारे में नहीं चिंतन करना, मैंने क्या रिस्पॉन्स किया था और मैं क्या रिस्पॉन्स कर सकती हूँ आगे, देन आई विल गो टू स्लीप धीरे धीरे क्लीनिंग दैट, अदरवाइज गो टू स्लीप विद द हर्ट, गेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग विद दैट हर्ट, एंड देन व्हेन यू मीट दैट पर्सन अगेन री इन्फोर्स दैट हर्ट, इट नेवर जस्ट गेट्स क्लीन्ड ऑफ लाइक दैट। देन
0: वंडरफुल, जो थॉट क्रिएट करने के जो प्रोसेस को हमने समझा, तो उसमें तीन चीजें जो हैं आपने कहा, इन्फॉर्मेशन और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, एंड
1: वन मोर वी हैव टू सी इज बिलीफ्स,
0: बिलीफ सिस्टम्स, कि कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं जो मेरे थॉट्स को क्रिएट करते हैं। तो दो को तो हमने खूब अच्छी तरह से समझा है, और आपने जो सॉल्यूशंस दिए हैं, सी समझ के जब तक कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया, चाहे कितनी भी जैसे आपने कहा किताबें हैं या कुछ भी है, हर कोई बात कर रहा है थॉट पावर की, और आपने जो हमें सॉल्यूशन दिया है वो ये कि अगर सिचुएशन आती है जो कुछ भी है, हम समय समय पर राइट काइंड ऑफ लिटरेचर को अगर पढ़ें,
1: एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट डेफिनेटली,
0: हाँ उसमें कुछ पढ़ें जरूर, यू नो पहली चीज जो हम करें,
1: पढ़ें कुछ सुने, मतलब एनीथिंग दैट आई
0: सेंसरी ऑर्गन से, हाँ जो हम कर सकते,
1: क्योंकि नहीं तो वी आर फ्लडेड विद नेगेटिव,
0: और वो हमें तो मांगना भी नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी मिल रही होती है, ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पे भी मिलते हैं वो जानकारी वैसे,
1: यू नो सिंपल एग्जाम्पल इज दिस टेलीविजन प्रोग्राम, बहुत सारे भाई बहने अपना फीडबैक भेजते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि हर रोज वो रेगुलरली ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ नहीं करना ना, बस उतना टाइम अपने लिए टाइम निकाला है, दैट एफर्ट इज बीइंग मेड, तो अपने लिए वो आधा घंटा डेडिकेट किया कि हमें ये प्रोग्राम देखना है। नाउ थॉट, उसी टाइम पर और भी तो प्रोग्राम्स हैं आपके टेलीविजन पर, 100 चैनल्स आ रहे हैं, लेकिन समवन इज चूजिंग टू वॉच दिस प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी और व्हाटएवर व्हाटएवर, तो वो इस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अंदर ले रहे हैं। यू नो मेजॉरिटी लोग जो मिलते हैं, अगर उनसे यू नो खुद ही बोलते हैं कि एक चीज जो हुई है ये प्रोग्राम देख के, इमिजिएटली कहते हैं मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है, यू नो दे डोंट इवन रियलाइज व्हाट समटाइम Everyone's common thing is मेरा thought process change हो गया,
0: सोचने का तरीका बदला है, बदल
1: गया, हाँ। रोज रोज रोज रोज जब सुना अपने बारे में वो सुना, it has to have an impact, has to, so this is practical proof कि कैसे बदलती है
0: information जो है, तो फिर इस प्रोग्राम के साथ तो जुड़े रहना ही है आपको, कि हर रोज जो आधा घंटा प्रोग्राम जो भी वक्त मिल रहा है वो जरूर देखना, और मॉर्निंग में भी जरूर कोशिश करें कि कुछ पढ़ें, कोई ऐसी जानकारी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने में आपको स्ट्रेंथ देगी, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो कहा कि मेरा बिलीफ, मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, तो दिन भर के पास्ट हर्ट को, सारी नेगेटिविटी को अगर हम डिलीट कर पाएं दिन भर में, आई थिंक समवेयर दैट इज़ गोइंग टू हेल्प, और वो मेरी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको भी काफ़ी बेटर कर देगा। अगर मैं रोती हुई सोऊंगी तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी। तो आपके मन में अगर कोई सवाल उठता है या कोई बात है, जो सजेशन है जो आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ा हुआ बताना चाहेंगे, आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। शिवानी बहन, जिस तरह से रोज इस पूरी श्रृंखला में हमें बातें समझ में आ रही हैं, जरूरी ये भी दिखता जा रहा है कि उस पर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। थोड़ी देर साइलेंस में बैठ के और अगर वो थॉट क्रिएट करें जो आज हमने समझे हैं, सो विल
1: आई थिंक हम दो मिनट रिफ्लेक्ट करके लेट गो करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को या उन परिस्थितियों को जो आज दिन तक हम समझते थे कि मेरे ऊपर बहुत सारी हावी हो रही हैं। सो जस्ट टेक एनी वन, बहुत ज़्यादा सबको इकट्ठे नहीं लेते, लेट्स टेक एनी वन एंड लेट्स लेट देम गो फ्रॉम हियर। कंफर्टेबल होकर बैठे, परिस्थितियों से और लोगों से अपने आप को हटाते हुए अपने मन को देखते हैं। क्या सोच सारा दिन मेरी चलती है, एवरी थॉट दैट आई क्रिएट, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये मेरी क्रिएशन है। आज दिन तक जो दर्द, जो धोखा, जो तकलीफ मैंने पकड़ कर रखे थे, वो मैंने पकड़ कर रखे थे। आई चूज टू होल्ड ऑन टू इट, आई चूज टू लिव इन पेन। आज मैं अपने आप को उस दर्द से लिबरेट करती हूँ। By creating the thought, I am a peaceful being. No one else has the power to hurt me. Peace is my nature. Shanti meri shakti hai, ki meri creation hai. Om Shanti.
0: Om Shanti. I'm a peaceful being. In fact, it's amazing, you know, how just one thought and sitting in silence can help you so much. Let go is so simple. Again, ball is in your court. कितने को पकड़ के रखना है और किसको छोड़ देना है, कितना आसान है। एक क्षण में हम छोड़ सकते हैं उस सारे दर्द को। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसका ये सफर आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।

0: अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है।
1: गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री राम कृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया, मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं, मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है, आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं, जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं, ये तो एकदम उन्माद है, मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत। जो भी हो मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा, परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो। उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया।
2: कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा,
3: देखो देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है?
1: जी हां।
3: वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे ये तो ध्यान से धैर्य, जन्म से ही ध्यान से धैर्य।
0: नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है। वरन उनकी सत्कथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष है। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की।
1: महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु वैसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं।
1: उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं। पागल होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले मनुष्य ही कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष पावन, पवित्र और त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं।
0: इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए।
2: इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए।
1: दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराह नगर से दाशरथी, सान्याल, सातकड़ी, लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंत तो गत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रही हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी आपने मेरी ये कैसी अवस्था कर डाली, मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा,
3: अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं, समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा।
1: आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए, मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के

0: बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है, मैं यही सब सोचता विचारता रहा पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई। महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा। सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं तो उन्हें पागल कैसे समझूं। किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त तो और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई, फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ, जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो। लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।
1: इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहल कर बातचीत की और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्षस्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
2: कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब

0: आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था।
1: इधर इन तीन दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था। ये कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष हैं। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है।
0: वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे, और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्कसंगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी।
1: अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं।
2: ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे, दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी, उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था।
0: श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण, भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी।
1: सन 1884 ईस्वी में किसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा,
3: तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है। नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन, जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए।
1: सब जीवों पर दया कहते ही श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्धबाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे,
3: जीव पर दया, अरे कीटाणु कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा।
1: ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्रनाथ ने कहा, आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और मतांतर रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया। आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है, संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: विनोबा जी के पिताजी की नियम निष्ठा भी अत्यंत कड़ी थी। हरिपुरा कांग्रेस में वे गए थे, वहां निवास के लिए घास फूस की झोपड़ियां बांधी गई थी। झोपड़ियों के सामने ही बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ किसी को चूल्हा स्टोव जलाना मना है। उन्होंने नियम पढ़ लिया था, रोज सुबह नदी के उस किनारे जाते, साथ में दूध ले जाते, वहां चूल्हा सुलगा कर दूध गर्म करके नहा धोकर लौटते। दिन भर दूध के अलावा और कुछ भी नहीं लेते थे और उनका आतिथ्य प्रेम अद्भुत था। विनोबा जी बताते हैं,
1: जब मैं साबरमती आश्रम में रहता था तब एक बार जमनालाल जी को पिताजी से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने पिताजी को पत्र लिख दिया था कि फलानी गाड़ी से आऊंगा। उस वक्त माँ नहीं थी, पिताजी अकेले ही रहते थे और रसोई भी खुद ही बनाते थे, इसलिए आतिथ्य भी उन्हें ही करना था। जमनालाल जी मारवाड़ी थे, इसलिए पिताजी ने मारवाड़ी खान पान पद्धति, परोसने की पद्धति, थाली कटोरी आदि की जानकारी प्राप्त की। मारवाड़ी को तो फुलका रोटी चाहिए, ये पता चलते ही उन्होंने बाजार से गेहूं लाया, खुद पीसकर आटा तैयार किया और उसके फुलके सेंके। जमनालाल जी ने आने पर देखा कि घर में नौकर कोई नहीं था, सब कुछ पिताजी ने ही किया था, तो उन्होंने पूछा,
2: घर में नौकर नहीं था तो फिर इतना सारा कष्ट आपने क्यों उठाया?
3: उसमें कौन सी बात थी, यह तो हमारा आतिथ्य धर्म है।
2: आपके पिताजी तो इतने स्निग्ध और प्रेमल है, आप क्यों इतने रूखे सूखे हैं?
1: रूखा सूखा राम का टुकड़ा।
0: विनोबा के पिता अत्यंत स्वावलंबी वृत्ति के थे, अपना कोई भी काम वे माँ को या बच्चों को नहीं करने देते थे। माँ के जाने के बाद 30 साल वे अकेले रहे, परंतु कभी किसी से थोड़ी भी सेवा उन्होंने नहीं ली। एक बार उनसे पूछा कि
1: बर्तन मांजने या झाड़ू लगाने के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख लेते हैं?
3: कितना भी अच्छा नौकर हो, उससे कुछ गलती हो जाएगी तो फिर हम कुछ कटु बोल देंगे। उससे बेहतर यही है कि अपना काम खुद करे, इसमें थोड़ा शर्म तो होता है लेकिन किसी को दुख देने का प्रसंग नहीं आता।
0: ये घटना तब की है जब विनोबा 16 साल के हुए। बचपन में विनायक बहुत आग्रही स्वभाव के थे, जो तय किया वो पूरा होना ही चाहिए। इससे पिताजी बहुत नाराज भी हो जाते थे, कभी कभी तो पिटाई भी करते, परंतु उस वक्त वे लोकमान्य तिलक के कोर्ट में कहे गए शब्द दोहराते,
1: भले ही आप मुझे गुनहगार मानिए, मैं तो निर्दोष ही हूँ। आपके न्यायालय से और एक बड़ा न्यायालय ईश्वर का न्यायालय ऊपर है, शायद ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी कि कष्ट सहकर ही मेरा काम पार पड़ेगा।
0: इस संदर्भ में बचपन के वे प्रसंग याद करके बहुत बार विनोबा जी पेट पकड़कर हंसते हैं और कहते हैं,
1: मेरा ये रोज का नियम था कि बाहर भटककर रात को घर वापस लौटता था, भोजन करके सोने के लिए जाने से पहले पिताजी के पास हाजिरी लगती थी। दिन भर के कार्यक्रम में उनकी दृष्टि से मेरी कोई ना कोई शरारत या गैर व्यवस्था नजर आ ही जाती थी। कभी उनकी किताब उसी जगह न रख कर दूसरी जगह रख दी, या ऐसा ही कुछ और हो गया, तब फिर मार पड़ती। एक भी दिन खाली नहीं जाता था, ये हमारा नित्य क्रम था। कभी कभी माँ से पूछता, माँ तुम मुझे क्यों नहीं मारती हो?
4: क्या उधर से तुझे कम मार पड़ती है कि मैं उसमें और जोड़ू?
0: परंतु एक दिन कुछ दूसरा ही हुआ। रोज के जैसा घूमकर घर आए, भोजन आदि से निपट गए, सब कार्यक्रम खत्म हुआ, परंतु उधर से कोई बुलावा नहीं आया। विनोबा तो राह देखते ही रहे और समय बढ़ता गया। उन्हें नींद आने लगी और नींद लग भी गई।
1: आश्चर्य, बिना मार खाए में सोया, सुबह उठा, दिन भर का कार्यक्रम चला, रात हुई, खाना पीना हुआ, परंतु दूसरे दिन भी पिताजी का बुलावा नहीं आया। क्या कहा जाए, बिना मार खाए दूसरे दिन भी मैं सोया। और फिर तो तीसरा दिन, छठा दिन, पूरा सप्ताह बीत गया, हमें मार ही नहीं मिली। अरे क्या बात है। और एक दिन भेद खुला, अब तुम 16 साल के हुए ना।
0: विनोबा के पिता संगीतज्ञ भी थे, आखिर के 30 सालों में ही अपना संगीत का अध्ययन उन्होंने पूरा किया। एक मुसलमान गवैये के पास उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 14-14 घंटे वे रियाज करते थे। अपने घर में ही अनेक लोगों को उन्होंने गायन और वाद्य संगीत सिखाया। हमारा पुराना मुसलमानी गायन लुप्त न हो जाए, इस दृष्टि से अतिशय परिश्रम से नासिर खान का मृदंगबाज और शेख राहत अली का ठुमरी संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया। उनकी अभ्यास की पद्धति कुछ अलग ढंग की थी। वे कहा करते थे,
3: जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारे क्लास में कोई लड़का एक विषय में होशियार तो कोई दूसरे विषय में होशियार रहता था। कोई भाषा में आगे था तो कोई गणित में। यह देखकर मुझे ताज्जुब होता था। एक विषय में बुद्धि चलती है तो अन्य विषयों में क्यों नहीं चलनी चाहिए? मुझे जिन विषयों की आवश्यकता लगती है उन सब में मेरी बुद्धि चलती है।
0: विनोबा की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने छठी कक्षा तक की पढ़ाई घर पर ही करवाई। अगली शिक्षा के लिए बड़ौदा के कला भवन में भेजा। चूंकि विनोबा ने अंग्रेजी तीसरी कक्षा तक पढ़ी थी और वहां प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए विद्यार्थी आए थे, अतः विनोबा को वहां प्रवेश नहीं मिला। अंत में पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का निर्णय लिया और घर पर अंग्रेजी तथा गणित का अभ्यास शुरू हुआ। उन्होंने एक बात और देखी, वो ये कि विनोबा जितना अभ्यास करते थे उससे ज्यादा घूमते थे। उन्होंने ज्यादा अभ्यास भी देकर देखा, विनोबा उसे भी बखूबी करके घूमने निकल जाते थे। अंत में पिता ने विनोबा को स्कूल भेजा। वहां का अपना अनुभव बताते हुए विनोबा कहते,
1: वहां भी मेरा यही उद्योग था। मैं स्वयं तो घूमने जाता था और मित्रों को भी घर से खींचकर घूमने ले जाता, उन्हें पढ़ने नहीं देता था। मेरे मित्र बाबा जी मोघे मेरे डर से किसी मंदिर में छुपकर पढ़ते थे। मैं वहां से भी उन्हें ढूंढ निकालता और जबरन अपने साथ ले जाता था। उस समय मैं एक ही वाक्य कहता था, विश्वविद्यालय के भ्रम का कुमड़ा हर साल फूटता और उसमें से सैकड़ों बीज बाहर आते।
0: उस समय विनोबा को दो आदतें थी, पढ़ना और पढ़ाना। जरा भी समय मिलता तो वे घूमने निकल जाते थे। उनके मित्र रघुनाथ धोत्रे कहते थे कि विनया तुम्हारे पाँव में चक्र है, और माँ कहती थी,
4: विनया पिछले जन्म में जरूर तू बाघ रहा होगा। एक तो तुम्हारी नाक तीव्र है, थोड़ी सी महक तुझे सहन नहीं होती, और दूसरा तुझे सारा दिन घूमना अच्छा लगता है।
0: बड़ौदा के सारे रास्ते विनोबा के परिचित हो गए थे। कोई भी समय उनके लिए प्रतिकूल नहीं था। दौड़ना बहुत पसंद था, इसीलिए खूब दौड़ना, कितना दौड़ा इसका कोई हिसाब नहीं रहता। अपनी घटना का जिक्र करते हुए विनोबा कहते हैं,
1: एक बार रात को 12 बजे मैंने दौड़ना शुरू किया। बड़ौदा राजमहल को जो रास्ता जाता था उस पर मैंने दौड़ना शुरू किया था। पहरे पर जो सिपाही था उसने नियमानुसार जोर से आवाज लगाई, हुकुम डर। वस्तुतः हु कम्स देयर का अभ्रंश था। मैंने ध्यान नहीं दिया, दौड़ता रहा, और जब मैं उसी रास्ते वापस आया तो सिपाही ने मुझे रोका और पूछा, क्यों दौड़ रहे हो? मैंने कहा, व्यायाम के लिए। वो बोला, रात 1 बजे कोई व्यायाम के लिए दौड़ता है? कुछ नहीं, तू तो चोरी करने वाला होगा। तो मैंने पूछा, चोरी करने वाला जिस रास्ते से जाता है क्या वो उसी रास्ते से वापस भी आता है? वो चुप रहा और मुझे जाने दिया।
0: एक बार दिवाली के दिन किस घर में कितने दिए जलाए या नहीं जलाए गए ये देखने निकले। 3 दिन घंटों सभी गलियों में चक्कर लगाए विनोबा ने, परंतु बड़ौदा में भी एक घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में दिया न जला हो। यहां तक कि मुसलमानों के घरों में भी दीपक जले थे। विनोबा जी अलग अलग मंदिरों में जाते थे। उन्होंने अपने कॉलेज के पास के एक मंदिर का नाम परीक्षेश्वर रखा था, क्योंकि परीक्षा के दिनों में दर्शन के लिए और परीक्षा में पास करवा दो इसका आशीर्वाद मांगने वालों की भीड़ वहां रहती थी। विनोबा जी बताते हैं कि बचपन में उन्हें गणित विषय बहुत ही प्रिय था। उनके 3 अत्यंत प्रिय ग्रंथों में यूक्लिड की भूमिति का विशेष स्थान है।
1: मेरा सारा ध्यान स्कूल की घंटी पर रहता था, पीरियड खत्म हो और कब बाहर जाने को मिले। एक बार प्रोफेसर साहब कुछ नोट्स लिखा रहे थे, सब विद्यार्थी लिख रहे थे, मैं नहीं लिख रहा था, सुन रहा था, और दोस्तों द्वारा पूछे गए गणित के सवालों को हल करने में तल्लीन था। प्रोफेसर ये सारा तमाशा देख रहे थे। जब लिखने का काम पूरा हुआ तो लापरवाही देखने की दृष्टि से उन्होंने कहा,
5: विनायक अब तुम अपने नोट्स उठाकर सुनाओ।
0: विनायक खड़ा हुआ और धड़ल्ले से अपने नोट्स पढ़ने लगा, मानो सचमुच में नोट्स लिखे हो। प्रोफेसर साहब तो अवाक रह गए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना लिखे इस तरह नोट्स सुनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा,
5: जरा तुम्हारे नोट्स तो देखें।
1: आप मेरे नोट्स नहीं पढ़ सकेंगे।
0: प्रोफेसर ने देखा कॉपी में सचमुच ही कुछ भी नहीं लिखा था, कॉपी कोरी थी। एक बार प्रोफेसर गणित का एक कठिन सवाल विद्यार्थियों को समझा रहे थे। प्रश्न हल किया और उसका उत्तर किताब के उत्तर से मिलाने लगे। उत्तर भिन्न था। फिर से सवाल जांचा तो वही उत्तर। गलती कहां थी पता नहीं चलता था। शिक्षक को विनायक के गणित ज्ञान का पता था, इसीलिए उन्होंने कहा,
5: विनायक तुम देखो तो यह प्रश्न।
1: साहब आपका उत्तर सही है, किताब में उत्तर गलत छपा है।
0: विनोबा के जवाब में गहरे आत्मविश्वास की झलक देखने को मिलती थी। गणित के किसी भी सवाल को हल किए बिना वे छोड़ते नहीं। उनके इस आदत के कारण कॉलेज के प्रथम वर्ष में तो फेल होते होते रह गए। परीक्षा में गणित का पहला सवाल ही गलत निकला। उसे हल किए बिना वे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। जब समय पूरा होने को आया तब उनके ध्यान में आया और इस प्रश्न को छोड़कर दूसरे 3-4 सवाल थोड़ी ही देर में कर दिए और उनको 33 नंबर मिल गए। फेल होते होते बचे। एक बार कक्षा में गणित के प्रोफेसर गणित पढ़ा रहे थे, उसमें विनायक ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब प्रोफेसर साहब तुरंत नहीं दे पाए। उन्हें कहना पड़ा कि
5: इसका जवाब मैं कल सोच कर दूंगा। इतने साल से मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं परंतु आज तक किसी ने ऐसा सवाल पूछा नहीं था। तुम लोगों को लगता होगा कि मैं कितनी तत्परता से पढ़ाता हूं परंतु यह तो मैं वर्षों से सिखाता आया हूं, तो यंत्रवत काम चलता है। आधी नींद में भी सिखाने की मेरी आदत है, परंतु तुम्हारा सवाल अलग प्रकार का है, उसका जवाब मैं कल दूंगा।
0: विद्यार्थी अपनी गणित की उलझने उनके पास ले आते। स्वभाव तो ऐसा था कि उनसे बात करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सबके कागज पर अपना अपना प्रश्न तथा नाम लिखा रहता था, उसी कागज के पीछे हिसाब सुलझा कर लिख देते थे। उनकी दोनों जेबें ऐसे कागजों से भरी पड़ी रहती थी, एक जेब में हल किए हुए प्रश्न, दूसरे में हल न किए प्रश्न। इसीलिए काका साहब कहते हैं,
2: विनोबा गणितज्ञ है, बिना हिसाब लगाए न वे कभी पढ़ते हैं, न कभी सोचते हैं, न कभी कोई काम हाथ में लेते हैं।
0: उनके जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में गणित दिखता है। खाने के लिए बैठेंगे तो दूध दही के चम्मच गिन गिन कर खाएंगे। कभी एक हाथ चम्मच अधिक कम निकला तो जयदेव की पुकार होगी, पूछताछ होगी। बाहर मैदान में चक्कर काटेंगे तो भी हिसाब से, सब कुछ हिसाब से चलता है। एक बार गंगा सागर की यात्रा में लॉन्च से जा रहे थे, दूर दूर तक पानी ही पानी था। बाबा पानी की ओर मुंह किए बाहर खुले में ही बैठे थे, लगता था कि किसी गहरे चिंतन में होंगे। एकाएक कहने लगे,
1: देखो यहाँ गीता पड़ी है।
0: मीरा दीदी तो ढूंढती रही, कहाँ है गीता। थोड़ी देर के बाद ध्यान में आया कि लॉन्च के अग्रभाग पर मोटी रस्सी का एक गोल चक्र पड़ा था जिसके 18 आरे थे। गणित और गीता साथ साथ चलती है। फ्रेंच पढ़ाने वाले विनोबा के शिक्षक स्वभाव से मृदु और शांत थे। उनका स्वर कभी भी ऊंचा नहीं होता था, वे बात भी आवेश से नहीं करते थे। एक बार विनोबा की परीक्षा चल रही थी और विनोबा जी पेपर लिखने में मग्न थे। शिक्षक जी ने रोल कॉल लेने की शुरुआत की। जैसे ही विनोबा का नाम आया लगभग चिल्लाते हुए उन्होंने प्रेजेंट सर कहा। हाजिरी होने के पश्चात वे विनोबा के पास आए और बोले,
6: देखो विनायक, माना कि आप पेपर हल करने में मग्न थे, ये बात भले ही सत्य हो परंतु फिर भी जोर से चिल्लाना सही नहीं। आवाज हमेशा मृदु होनी चाहिए। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं पता है? बिकॉज आई लव यू।
1: इतना सुनना था कि मेरी आंखें भर आईं। फ्रेंच वाले सर मृदु स्वभाव वाले थे तो इतिहास वाले जोरदार थे। वे हमें हिस्ट्री ऑफ लिबरेशन पढ़ा रहे थे। उनसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वर्णन सुनते हुए ऐसा लगा कि पढ़ाई छोड़ अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़ी।
0: पाठशाला के दिनों की बात है। उनका एक शिक्षक था, विद्यार्थियों को छड़ी से मारने की उनकी आदत थी। वे एक छोटी सी लकड़ी रखते थे और वो अलमारी में ताले में बंद करके रखते थे। किसी लड़के को पीटना होता तो अलमारी से लकड़ी निकाल कर पीटते थे। विनायक को ये पीटना ठीक नहीं लगता था। वो सोचता था कि किसी विषय के समझने का पीटने से क्या संबंध है। वो उस ताले की दूसरी चाबी भी ढूंढ लाया और ताला खोलकर अलमारी से लकड़ी निकालकर बाहर फेंक दी। मास्टर साहब ने लकड़ी ढूंढने के लिए सारा सामान उल्टा पलटा तो भी लकड़ी न मिली। तब वे दूसरी लकड़ी ले आए और फिर वही क्रम जारी कर दिया। विनायक ने दोबारा लकड़ी फेंक दी। एक लकड़ी गायब होती तो दूसरी आ जाती। यूं करते करते मास्टर महाशय की 4-5 लकड़ियां गुम हो गई। तब वे बहुत झिल्लाए, बार बार बच्चों से सख्ती से पूछने लगे,
5: किसकी किसकी शरारत है ये? कौन है वो बच्चा? ठीक है, मैं पता लगा लूंगा।
7: सर, सचमुच हमें नहीं पता कौन कर रहा है।
0: आखिरकार एक दिन शरारती लड़के का पता चल ही गया। और फिर क्या पूछना था? शरारती लड़के की अक्ल ठिकाने लाने के लिए उन्होंने विनायक को सजा सुनाई।
5: देखो, मुझे उस शरारती बच्चे का पता चल गया है जो मेरी लकड़ियां चुराता था। विनायक, उठो और 500 बैठक लगाओ, यही तुम्हारी आज की सजा है।
0: उस समय विनायक की उम्र 10 साल की थी। 500 बैठक मामूली बात नहीं थी, परंतु मास्टर साहब ने तो हुक्म दे दिया। बैठक गिनने के लिए सामने एक दूसरे लड़के को खड़ा कर दिया। वो लड़का तो विनोबा का दोस्त ही था, कभी कभी वो भी शरारत में भागीदार बनता था। वो गिनने लगा,
7: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 27, 28, 29।
0: परंतु विनायक को शिक्षक ने जैसा झूठ समझ लिया था, वैसा वो था नहीं। वो भी अपने मन से ही गिनती करता जा रहा था। उसने तय किया था कि 500 बैठकें करनी ही हैं। वो चौकीदार तो बीच बीच में रुक जाता था और 5-25 अंक खाकर फिर गाड़ी आगे चलाने लगता था। ऐसा करते करते 100-125 बैठकें हुई होगी और उसने कह दिया कि
7: सर, 500 बैठक हो गई।
5: बस हुआ, बैठो अब।
0: परंतु विनायक तो बैठक लगाता ही रहा, तो शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ।
5: क्यों रे, बैठता क्यों नहीं?
1: अभी मेरी 500 बैठक हुई नहीं।
5: अरे वह कह रहा है ना कि हो गई।
1: नहीं सर, अभी सिर्फ 123 हुई हैं।
5: खैर बैठ जा, फिर भी 18 बैठक ज्यादा ही हो गई।
1: मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आपने तो मुझे 500 बैठक लगाने का हुक्म दिया था ना, अभी तो 123 हुई हैं, तो फिर 18 ज्यादा कैसे हुई?
5: अरे लड़के, 500 यानी 100 और 5, 105 है कि नहीं? उस हिसाब से तेरी 18 ज्यादा हो गई।
0: शिक्षक ने भेद खोला और विनायक बैठ गया। ये मजेदार कहानी सुनाते हुए विनोबा जी कहते हैं कि
1: आज भी मैं वह आंकड़ा भूला नहीं, 123 यानी 1, 2 और 3, 18 यानी गीता माता के 18 अध्याय और 500 यानी 5 और 100। उस वक्त भी मुझे महसूस होता था कि शिक्षक विद्यार्थी संबंध यानी चेतन का चेतन से संबंध होना चाहिए। विद्यार्थी को पूर्ण मुक्ति का अनुभव आना चाहिए। विद्यार्थी से भी कुछ ना कुछ ग्रहण करने के लिए शिक्षक के दरवाजे खुले रहने चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थी पर ही भरोसा ना हो और वह चौकीदार रखे तो वह शिक्षक कैसा और वह विद्यार्थी ही कैसा? परस्पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण मुक्ति का वातावरण आवश्यक है।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस व्यक्तित्व की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है हवलदार ईश्वर सिंह। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नई दिल्ली से विष्णुपाद बराल और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लन शाहनवाज। नवंबर 1945 से 1946 तक चले एक ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान देश भर में गूंज उठा था ये नारा। दिल्ली के लाल किले में कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से ये मुकदमा चला और उस समय भारत की आजादी के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को इसने एकता के सूत्र में बांध दिया। इन्हीं तीन सैन्य अधिकारियों में से एक मेजर जनरल शाहनवाज खान की चर्चा आज इस कार्यक्रम में। मेजर जनरल शाहनवाज खान आजाद हिंद फौज के एक प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी और स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वो एक महान देशभक्त, बहादुर सैनिक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबियों में से एक थे। इसके साथ ही वो एक समर्पित राजनेता और सच्चे समाजसेवी भी थे। शाहनवाज खान का जन्म 24 जनवरी सन 1914 को रावलपिंडी के पास स्थित गांव मटौर में हुआ था। उनके पिता का नाम टीका खान था, जो स्वयं एक फौजी थे। पारिवारिक वातावरण से ही उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक सैनिक बने और राष्ट्र की सुरक्षा का काम करें। उन्होंने देहरादून के इंडियन मिलिट्री कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और सन 1935 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। इस तरह उनके बचपन का एक सपना पूरा हुआ। वो एक अत्यंत पराक्रमी और जांबाज सिपाही थे, जो मिट तो सकता था लेकिन टूट नहीं सकता था। यही कारण है कि सेना में उनकी विशेष पहचान रही और पदोन्नत होते हुए वो कैप्टन के पद तक पहुंचे। भारत भूमि की सेवा ही उनका अटल संकल्प था।

शाहनवाज खान ब्रिटिश भारतीय फौज में शामिल हो चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। शाहनवाज खान को दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती मिली थी। इसी बीच जापानियों ने सिंगापुर पर हमला कर दिया। सिंगापुर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना के साथ भारत से लगभग 60,000 भारतीय सैनिकों को सिंगापुर भेजा। इसमें कैप्टन के तौर पर शाहनवाज खान भी शामिल थे। भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन ब्रिटिश सेना की हार हुई। शाहनवाज खान को हजारों सैनिकों के साथ युद्धबंदी बना लिया गया। सिंगापुर जेल में शाहनवाज खान की भेंट अनेक क्रांतिकारी सैनिकों से हुई और भारत की आजादी के लिए उन क्रांतिकारियों के समर्पण से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। ये उनकी जिंदगी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और उन्होंने आजाद हिंद फौज की मदद से इन बंदी सैनिकों को रिहा करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंदी सैनिकों के सामने ओजस्वी भाषण दिया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की वाणी का प्रभाव बहुत गहरा था। सैनिक अपना संपूर्ण जीवन उन्हें समर्पित करने को तत्पर हो गए। इस तरह शाहनवाज खान सहित सैकड़ों सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और भारत माता की मुक्ति के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। ये शाहनवाज खान के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव था। नेताजी के विचारों से जैसे उनके भीतर एक उजाला हो गया। नेताजी ने उन्हें भारत को एक भारतीय की दृष्टि से देखने का बहुमूल्य दृष्टिकोण दिया। फौजी तो वो अब भी थे, लेकिन अब उनका समर्पण आजाद हिंद फौज के लिए था। अब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों का लाभ लेकर भारतीय स्वाधीनता के लिए युद्ध का इरादा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाहनवाज खान की देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता से बहुत अधिक प्रभावित थे। नेताजी ने उन्हें हुकूमत आजाद हिंद की कैबिनेट में भी शामिल किया था। सन 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें मांडले में तैनात सेना की टुकड़ी का कमांडर नियुक्त किया। नेताजी का सपना था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज के सबसे योग्य और जाबाज सैनिकों की एक विशेष रेजिमेंट तैयार की। इस रेजिमेंट को भारतीय सीमा में घुसकर आजादी की लड़ाई का शंखनाद करने का दायित्व सौंपा गया। इस रेजिमेंट की कमान नेताजी ने शाहनवाज खान के हाथों सौंपी और ये सैनिक बढ़ चले निर्भय निर्द्वंद्व।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाहनवाज खान की बहादुरी और उनके समर्पण से अत्यधिक प्रभावित थे। नेताजी ने उन्हें मेजर जनरल की उपाधि प्रदान की थी। नेताजी की योजना के अनुसार शाहनवाज खान ने अपने सैनिकों के साथ पूर्वोत्तर भारत के कोहिमा और इम्फाल पर धावा बोला। इस लड़ाई में प्रमुख कमांडर के रूप में शाहनवाज खान ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सेना का नेतृत्व तो किया ही, अस्थायी रूप से इम्फाल और कोहिमा पर कब्जा भी किया, जो भारत की आजादी के लिए नेताजी का एक निर्णायक अभियान था। बर्मा से भारत की ओर बढ़ते हुए जापानी सेना के समर्थन से उन्होंने आजाद हिंद फौज का अद्भुत नेतृत्व किया तथा भारत में प्रवेश करने

कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन पर दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी हुकूमत ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। हर गली हर नुक्कड़ पर लोग नारा लगा रहे थे, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। अंग्रेजों ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन जनता के विरोध ने ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया। उनकी सजा को बर्खास्तगी में तब्दील कर दिया गया तथा आजाद हिंद फौज के इन अफसरों को अर्थदंड का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। ये मुकदमा आजादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई ऊर्जा से भर दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सेना से सीधे युद्ध कर मेजर जनरल शाहनवाज खान ने स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। आजादी के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा मेरठ से सांसद चुने गए। वो सन 1952 से 1971 तक लगातार 4 बार निर्वाचित हुए तथा उन्होंने रेलवे, कृषि, श्रम तथा इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। सन 1956 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए कमेटी बनाई गई तो शाहनवाज खान इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 9 दिसंबर सन 1983 को अंतिम सांस ली। वो एक महान देशभक्त थे जिन्होंने अपने देश को ही अपना मजहब माना और अपनी हर सांस उसे समर्पित कर दी। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस व्यक्तित्व की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस व्यक्तित्व की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।